0: Mitchy Roshi.
1: Only on Radio Mitchy New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: आपके एक्स जैसा मनहूस चेहरा लेकर मंडे इज बैक अगेन, बट द गुड न्यूज इज दैट इट्स ऑलमोस्ट ऑन इट्स वे आउट. एंड व्हाइल इट इज ऑन इट्स वे आउट, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या आप अपनी जिंदगी में किसी ऐसे रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं विच यू विश्ड वॉज ऑन इट्स वे आउट लाइक द मंडे टुडे, लेकिन वो कमबख्त रिलेशनशिप खत्म ही नहीं होता बिकॉज द एक्शन इज सो गुड. एक तो एक्शन की वजह से ना रिलेशनशिप्स में लोग मारे जाते हैं. अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, Why don't you hit me up? We will talk about it and end your Monday on a delightful note. मेरा नाम है मिर्ची रोशी. नाम के स्पेलिंग है R-O-C-H-I-E. और जैसे भी आपका रिलेशनशिप स्टेटस है, hit me up. We will talk about it and पक्का make you feel better. So while you find me on the gram या Facebook, कहीं मत जाना जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, it's hot.

0: Energy. Escabana, puscabana, sacabana. Gabana. Burga, burga. La viva la burga.
1: हेलो,
2: कुड आई स्पीक टू मनीष प्लीज?
1: स्पीकिंग,
2: मैं प्रोफेसर त्रिपाठी बोल रहा हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से। ओके मनीष, आई नीड योर फेवर, आपकी मदद की जरूरत पड़ गई थी। मैं यहाँ पे लेक्चर्स देता हूँ स्टूडेंट्स को। मैं यहाँ पे जो सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ मेरे स्टूडेंट्स को, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन, राइट, कि पहले इंसान एप था, आई बिलीव आपने भी पढ़ा होगा किसी जमाने में, यहाँ पहले इंसान बंदर की शक्ल में था, फिर वो धीरे धीरे धीरे धीरे यू नो इंगे के इंसान बन गया, राइट।
1: बताएंगे आप कौन बोल रहे हैं?
2: मैं एक बार फिर बताता हूँ, मैं प्रोफेसर त्रिपाठी बोल रहा हूँ, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन, राइट। एक मेरा सब्जेक्ट है जो मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, 40-50 स्टूडेंट्स हैं मेरे। इफ यू डोंट माइंड, मैं प्लीज आपसे अगर चाहूँ आप मुझे 2 घंटे दे सकते हैं मेरी क्लास में आके।
1: 2 घंटे करना क्या है, मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा हूँ।
2: तो ये मेरा एक सब्जेक्ट है जो मैं स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ कि इंसान बंदर होता था, तो मेरे स्टूडेंट्स इस बात पे यकीन कर नहीं रहे। तो आप अगर क्लास में आ जाएंगे ना स्टूडेंट्स के सामने, तो स्टूडेंट्स को सामने मैं आपको खड़ा कर दूंगा और आपका चेहरा ब्लैकबोर्ड के पास आ जाएगा, तो उनको यकीन आ जाएगा कि हाँ पहले इंसान वाकई में बंदर। आई एम श्योर कि सारे यकीन कर जाएंगे कि हाँ पहले इंसान बंदर हुआ करता था। बस इतनी हेल्प चाहिए थी मुझे आपकी। तो कब आ जाएंगे आप मुझे ये बता दीजिए, कल का रख ले। मेरी बात सुनो, आई एम प्रोफेसर, मेरी बात सुनिए यार। हेलो, वैसे दिल्ली कितनी गालियां खाऊं मैं आपको हंसाने के लिए यार, ये नाइंसाफी है।
1: हेलो,
2: मैं प्रोफेसर त्रिपाठी, मेरी बात सुनिए, मुझे माफ कर दो, थोड़ा ज्यादा हो गया था। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे नंबर दिया था तुम्हारी दोस्त कपिल ने, उसने कहा था कि तुम्हारा मुर्गा बना दे यार, मैं मुर्गा बनाया है, तुम रेडियो मिर्ची पे हो, आपकी इजाजत हो तो मैं हंस लूं यार। मनीष, वो एक्चुअली स्टूडेंट्स को यकीन नहीं आ रहा था कि आदमी पहले बंदर होता था, इसलिए मैंने लगा कि तुम आ जाओगे तो एक बार काम बन जाएगा यार। इंसान पहले बंदर होता था, अब मेरे को यकीन आ गया, मैं बता दूंगा उनको।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi. R-O-C-H-I-E. Roshi, Roshi. Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: आपने अपने होने वाले बॉयफ्रेंड को झूठ तो बोल दिया दैट यू आर अ फिटनेस फ्रीक, जब उसे पता चलेगा कि आप तो अपने बेड से बाथरूम तक जाने से पहले 100 बार सोचते हो, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन एग्जैक्टली?
3: द सीक्रेट बॉक्स.
2: यू नो मेरा इशारा किस तरफ है. इट इज टाइम टू डिस्कस ऑल योर कन्फेशंस. और अपनी कन्फेशन डिस्कस करने के लिए टू स्पिल द टी मेरे साथ है मेरी मिस्ट्री कॉलर. हेलो मिस्ट्री कॉलर.
4: हाय रोशी, हाउ आर यू?
2: आई एम वेरी गुड, हाउ आर यू नॉटी गर्ल?
4: Yes,
2: you are. आपने इंस्टा पे अपने नॉटीनेस के जो मुझे छोटे छोटे नमूने दिए थे, आई वॉन्ट टू हियर दी एंटायर स्टोरी मॉर्निंग ग्लोरी.
4: मैं ना अकेले रहती हूँ. आई एम सिंगल एंड इंडिपेंडेंट वुमन एंड मैं एक सोसाइटी में रहती हूँ. तो एक दिन क्या हुआ, मेरे फ्लैट की लाइट चली गई. तो मैंने भैया को बुलाया, इलेक्ट्रिशियन को. तो बोला कि मैम जो नीचे जो मीटर बॉक्स है उसकी चाबी चाहिए. तो मेरे पास नहीं थी, मेरे नेबर के पास थी. तो मैं उससे मैंने चाबी मांगी, उसने हेल्प कर दिया मुझे और सब फिक्स हो गया. बट हमारे पास एक्सचेंज हो गए थे उस दिन, ठीक है. उस दिन के बाद से हम रोज रात में ना सेक्सिंग करते हैं. एक दिन ऐसा नहीं है कि हम ना करें, हम लोग पूरी रात बातें करते हैं, ठीक है.
2: सुबह एक सेकेंड, नॉटी बातें करते हो आप पूरी रात, है ना?
4: पूरी रात. और कुछ नहीं पता मुझे कि वो सिंगल है या नहीं, उसे नहीं पता मैं सिंगल नहीं, बट हम कर रहे हैं और हमें मजा आ रहा है. हम रात में मतलब इट्स लाइक अ रोल प्ले, ठीक है. हम रात में चले जाते हैं सेक्सिंग मोड में. सुबह उठते वो ऑफिस जाता है, मैं ऑफिस जाती हूँ, हम दोनों एक दूसरे को देखते हैं और वी प्रिटेंड लाइक नथिंग हैपेंड. हम लिफ्ट में मिलते हैं, हम हाय हेलो करते हैं, अपने अपने रास्ते चले जाते हैं. सोसाइटी में इतने फंक्शन हो चुके हैं सबसे, हम मिलते हैं लोग साथ में. तब कोई कह नहीं सकता कि हम लोग जानते भी एक दूसरे को, बट हम लोग रात में कर रहे हैं. नॉटी बातें कर रहे हैं, वी आर डूइंग थिंग्स विद ईच अदर ऑन टेक्स्ट बट नॉट इन रियल लाइफ. और हमारी डील है कि हम कभी ऐसे ना सामने आएंगे तो मतलब एक दूसरे के सामने कभी कुछ पता ही नहीं चलेगा एक दूसरे को भी. दूसरों को तो छोड़ो, हम दोनों को एक दूसरे के बारे में पता चलेगा कि ओ हम रात में क्या गुड़ खिलाते हैं.
2: आर यू सीरियस?
4: या मतलब इट्स हैपनिंग फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम नाउ. बढ़िया.
2: इज इट
4: इज पता है क्या है,
2: इसे डिस्क्राइब करने के लिए देयर इज ओनली वन वर्ड, K-I-N-K. सीरियसली, लाइक आई कांट इवन इमेजिन. एंड आई डोंट थिंक आप दोनों में से किसी को रोशिफिकेशन की जरूरत है, बट बिकॉज यू आर हियर एंड बिकॉज यू शेयर्ड सच अ नॉटी स्टोरी विद मी, कर दूं आपको रोशिफाई?
4: प्लीज कर लो.
2: देयर यू गो,
0: यू हैव बीन रोशिफाइड.
2: अब आपको मुझे प्रॉमिस करना होगा दैट द नेक्स्ट स्टेप दैट यू टेक, इफ यू एवर टेक अनदर स्टेप इसके बाद विद योर नेबर, यू आर गोना कॉल मी एंड टेल मी अगेन. You are such a naughty girl. आपसे बात करके इतने मजे आए. और अगर आपकी भी जिंदगी में आपने ऐसे ही कोई naughty kinky काम किए हैं, why don't you send me a message on Insta या FB and whatever you do. कहीं मत जाना, जाना क्योंकि वापस तो यहीं है आना. सुनते रहो मिर्ची, it's hot.

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: खुशी बाबा की जय।
1: काम डाउन माय भक्तजनों, आज आपके लिए मेरे पास एक टिप है, ओके, समथिंग दैट आई लर्नड आउट ऑफ माय ओन पर्सनल लाइफ। एक चीज जो मोहब्बत में आपको नहीं करनी चाहिए वो सिंपली ये है दैट मोहब्बत में कभी भीख मत मांगना। डोंट एवर गो बेगिंग फॉर लव, क्योंकि असली प्यार जो होता है ना वो इतने नेचुरली फ्लो करता है और इतना एफर्टलेस होता है जैसे मानो एक बहती हुई नदी। और अगर आपको अपने प्यार के लिए भीख मांगनी पड़ रही है, यू विल नेवर गेट द लव दैट यू आर लुकिंग फॉर। और आप किसी से वो चीज़ मांग रहे हो जो वो क्लियरली इक्विप्ड नहीं है आपको देने के लिए। लव इज सपोज टू लिफ्ट यू हायर, नॉट ब्रिंग यू डाउन टू योर नीज। अगर आपके घुटनों पर लेकर आ रहा है ना, आई वुड सजेस्ट यू प्रे, बिकॉज दैट्स अ ब्यूटिफुल पोजिशन टू प्रे इन, बट डोंट एवर गो बेगिंग फॉर लव। और अगर जिंदगी आपको ऐसे मकाम पर ले आई है एंड यू वॉन्ट टू टॉक अबाउट इट, हिट मी अप ऑन द ग्राम या फेसबुक। मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE, एंड आई विल ऑलवेज ऑनर एंड प्रोटेक्ट योर लव। एंड ऑन दैट नोट, कहीं मत जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना। सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।

पटक मटक लौंडो के दिल पटक पटक ससे जाए अटक अटक आता माझी सटक सटक बम तेरा गुदे खाए कमर पे तेरी बटरफ्लाई बॉडी तेरी मक्खन जैसे खाने में बस तू बटर खाए कम ऑन बेबी किकी किकी काटू तेरी टिकट टिकट खेलता नहीं क्रिकेट विकेट पर ले लूं तेरी विकेट विकेट।

0: वाला सा ढंग तेरा, मुझसे चोरी चोरी बातें करे अंग अंग तेरा। तेरे लिए कुछ भी कर लूंगा, तेरी मैं हर लूंगा कोई भी पीड़ा। पागल हुआ तेरे पीछे जैसे दिमाग में कीड़ा, लगे मीठी जैसे शक्कर शक्कर, आजा चला ले चक्कर चक्कर, बाकी के लौंडे पकड़ पकड़। I am the baddest motherfucker.
1: Heartbeat.

0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: आप पिछले दो साल से एक सिचुएशनशिप में हो, लाइक अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन. अब इन दो सालों में आपको लग रहा है कि हम बहुत ही जल्दी सिचुएशनशिप से रिलेशनशिप की तरफ प्रोग्रेस कर रहे हैं. देन यू फाइंड आउट नॉट रियली, बट अगले महीने तक हो जाएगा, चल दिवाली तक हो जाएगा, चल राखी तक हो जाएगा. आप उस स्टेज पर हो एंड देन दिस जेंटलमैन ऑन दी अदर साइड ऑफ द सिचुएशनशिप, वो आपसे कहता है कि यार हमसे ना हो पाई दीदी, बहुते हो गया, दो साल बस बहुते फन, चलो अब कट लो. और दीदी का जो दिल है वो टूटे जा रहा है कि भाई मुझे लग रहा था हम रिलेशनशिप की तरफ जा रहे हैं और ये तो आप कुछ और ही बातें कर रहे हैं जनाब, क्या हम सेम चैप्टर ऑफ द सेम बुक पढ़ रहे हैं. एंड देन जनाब टर्न्स अराउंड एंड टेल्स यू कि भाई इतना काहे गुस्सा हो रही हो, इतना काहे तुम्हारा दिल टूट रहा है, सिचुएशनशिप ही तो था, हमने कभी रिलेशनशिप कहा ही नहीं. और एक बार जब वो आई लव यू बोला था, वी वर जस्ट ड्रंक यार, और अगर मैंने अपने बेड को हमारा बेड बोल दिया तो क्या, इट्स अ स्मॉल थिंग, इसकी वजह से दिल मत तोड़ यार, इट्स नॉट कूल, नॉट कूल. ये जो बिहेवियर होता है ना, जो बॉर्डर लाइन गैस लाइटिंग होता है कि दिल तोड़ दिया, ऑल्सो कह रहे हैं कि बुरा मत फील करो, इट्स नॉट कूल. इसे कहते हैं सिचुएशन स्विच. तो जी हाँ बहनों और भाइयों, अभी तक तो हमें पता था दैट देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड अ सिचुएशनशिप, व्हिच इफ यू आस्क मी ऑनेस्टली इट्स टेरिबल. लेकिन सिचुएशनशिप के बाद अब एक और ये मास्टर टर्म आया है, विच इज सिचुएशन स्विच, विच मीन्स कि सामने वाला एक तो आपको रिलेशनशिप की तरफ नेविगेट नहीं कर रहा है, और दूसरा जब आपका दिल तोड़ रहा है प्री मच्योरली विदाउट टेलिंग यू, विदाउट इन्फॉर्मिंग यू, देन ही इज टेकिंग अवे योर राइट टू फील बैड अबाउट इट. भाई इतना

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

बात तो ये जो तू टिकटॉक टिकटॉक चलती है, माना ये सारी तेरी हाई हील्स की गलती है। रुक तो जा तू है कौन, ये तो बता तू है कौन, कहां से आई है कहां से जाएगी, पागल लड़की मुझे मरवाएगी।

अपनी पहली डेट विद अ पोटेंशियल 10/10 के साथ स्पॉइल करना चाहते हो, लाइक एक ही बार में सेल्फ डिस्ट्रक्ट बटन दबाना चाहते हो, देन दो काम कर लो. गेट ड्रंक विद योर न्यू फाउंड बे पहली डेट पर, और व्हाइल यू आर ड्रंक अपने एक्स के बारे में कॉन्वर्सेशन कर दो इस पॉइंट तक कि आपका जो करंट क्रश स्लैश बॉयफ्रेंड टू बी है अपने बारे में इतना कुछ सोचे और इनसिक्योर हो जाए कि उसके बाद ही डिसाइड्स ही नेवर वांट्स टू मीट यू अगेन, क्योंकि उसकी सेल्फ एस्टीम के धज्जियां तो आप उड़ा ही चुके हो. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वन ऑफ माय कॉलीग्स एट वर्क डिड. शी वाज सो into this guy aur wo itni anxious aur nervous thi that she decided to get drunk on the first date, aur unfortunately once she was drunk usne apne ex ke bare mein baat karna shuru kiya aur uske baad rona shuru kiya. Us time to uske 10/10 boyfriend to be ne use sambhal liya, but as soon as they got home he sent her a message saying I think you're still in love with your ex. कुछ समय बाद एक बार फिर से बात करके देखते हैं, ठीक है. आई थिंक यू नीड टू गिव योरसेल्फ सम टाइम एंड गेट इनटू थेरेपी. आउच. अगर आपके साथ भी जिंदगी में ऐसे ही वाहियात से वाहियात बद्दो बद्दी होते जा रहा है, व्हाई डोंट यू हिट मी अप एंड वी टॉक अबाउट इट. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE, एंड आई डोंट ड्रिंक, सो आई विल नॉट से थिंग्स टू यू दैट विल हर्ट यू. ऑन दैट नोट, कहीं मत जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: यार पीयूष जनरल स्टोर कितना सही लग रहा है. ओ मधु स्वीट्स तो बहुत ही अमेजिंग है. ओहो कमाल कुल्फी वाले हमें भी कुल्फी खिला दो. इमेजिन आप एक रोमांटिक डेट पर जा रहे हो एंड आपका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड कंसिस्टेंटली सामने जितनी भी दुकानें आ रही है उनका नाम ले लेके आपको टिप्पणियां दे रहा है. यू माइट फाइंड इट इंटरेस्टिंग पहली डेट पर बट अगर वो कंसिस्टेंटली हर बार ये करे तो कौन सी डेट पर जाकर आप इस बॉयफ्रेंड को डंप कर दोगे. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड टू वन ऑफ माय कॉलीग्स एट वर्क. शी वाज लाइक यार ये बंदा इतना 10/10 लग रहा था जब मैंने इसे राइट स्वाइप किया. पहली डेट कैफे में थी तो पता नहीं चला लेकिन इसकी बीमारी ये है जब भी इसे गाड़ी में डालो ये सामने के जितने भी स्टोर्स चाट की दुकानें कुल्फी के भंडार इन सब की नाम ले लेके टिप्पणियाँ देता है. शी वाज लाइक आई जस्ट कुडंट डील विद इट. चौथी बार जब उसने ऐसा किया मैंने गाड़ी रोकी उसे गाड़ी से निकाला सॉरी बोला एंड आई जस्ट ज़ूम्ड ऑफ बिकॉज आई रियली हैड टू डंप दिस गाय. ये बीमारी काफ़ी ख़राब और कंटेजियस लग रही थी. और अगर आपकी भी ज़िंदगी में कभी ऐसा हुआ है दैट यू रियली हैड टू डंप समबडी फॉर द स्ट्रेंजेस्ट रीज़न. मेरे पास ऐसे काफ़ी रीजन्स हैं सो डोंट स्मर्क. हिट मी अप ऑन इंस्टा या FB. लेट्स टॉक अबाउट इट. मेरा नाम है मिर्ची रोशी. नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. एंड व्हाइल यू डू दैट कहीं मत जाना जाना क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची. इट्स हॉट.

0: Mitchy Roshi.
1: Only on Radio Mitchy New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: आपने अपने होने वाले बॉयफ्रेंड को झूठ तो बोल दिया दैट यू आर अ फिटनेस फ्रीक, जब उसे पता चलेगा कि आप तो अपने बेड से बाथरूम तक जाने से पहले 100 बार सोचते हो, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन एग्जैक्टली?
3: द सीक्रेट बॉक्स.
2: यू नो मेरा इशारा किस तरफ है. इट इज टाइम टू डिस्कस ऑल योर कन्फेशंस. और अपनी कन्फेशन डिस्कस करने के लिए टू स्पिल द टी मेरे साथ है मेरी मिस्ट्री कॉलर. हेलो मिस्ट्री कॉलर.
4: हाय रोशि, हाउ आर यू?
2: आई एम वेरी गुड, हाउ आर यू नॉटी गर्ल?
4: Yes,
2: you are. आपने इंस्टा पे अपने नॉटीनेस के जो मुझे छोटे छोटे नमूने दिए थे, आई वॉन्ट टू हियर दी एंटायर स्टोरी मॉर्निंग ग्लोरी.
4: मैं ना अकेले रहती हूँ. आई एम सिंगल एंड इंडिपेंडेंट वुमन एंड मैं एक सोसाइटी में रहती हूँ. तो एक दिन क्या हुआ, मेरे फ्लैट की लाइट चली गई. तो मैंने भैया को बुलाया, इलेक्ट्रिशियन को. तो बोला कि मैम जो नीचे जो मीटर बॉक्स है उसकी चाबी चाहिए. तो मेरे पास नहीं थी, मेरे नेबर के पास थी. तो मैं उससे मैंने चाबी मांगी, उसने हेल्प कर दिया मुझे और सब फिक्स हो गया. बट हमारे पास एक्सचेंज हो गए थे उस दिन, ठीक है. उस दिन के बाद से हम रोज रात में ना सेक्सिंग करते हैं. एक दिन ऐसा नहीं है कि हम ना करें, हम लोग पूरी रात बातें करते हैं, ठीक है.
2: सुबह एक सेकेंड, नॉटी बातें करते हो आप पूरी रात, है ना?
4: पूरी रात. और कुछ नहीं पता मुझे कि वो सिंगल है या नहीं, उसे नहीं पता मैं सिंगल हूँ, बट हम कर रहे हैं और हमें मजा आ रहा है. हम रात में मतलब इट्स लाइक अ रोल प्ले, ठीक है. हम रात में चले जाते हैं सेक्सिंग मोड में. सुबह उठते वो ऑफिस जाते हैं, मैं ऑफिस जाती हूँ, हम दोनों एक दूसरे को देखते हैं और वी प्रिटेंड लाइक नथिंग हैपेंड. हम लिफ्ट में मिलते हैं, हम हाय हेलो करते हैं, अपने अपने रास्ते चले जाते हैं. सोसाइटी में इतने फंक्शन हो चुके हैं सबसे, हम मिलते हैं लोग साथ, मतलब कोई कह भी सकता है कि हम लोग जानते भी एक दूसरे को, बट हम लोग रात में

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

मुझे ना बहुत सारे साल और बहुत सारे आड़े टेढ़े रिलेशनशिप्स लग गए ये समझने में कि जिस रिलेशनशिप में आप किसी के साथ हंस सकते हो एंड लाइक ज़रूरी नहीं है कि कोई जोक क्रैक हुआ हो, बस जिंदगी पे हंस सकते हो आप, अपने ज़िंदगी के सर्कमस्टांसिस पे हंस सकते हो, यू नो दैट दैट रिलेशनशिप इज़ द वन फॉर कीप्स. अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान है जो आपको बिना बात के हंसा देता है, जिससे बात करते करते आपको जोक सूट जाते हैं और आपसे बड़ा स्टोइक इंसान इस दुनिया में कोई नहीं था, देन यू नो दैट दैट इज़ लव एंड दैट इज़ द काइंड ऑफ लव जो ज़िंदगी में मुश्किल से एक बार मिलता है. तो अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान है जो आपको रोते रोते हंसा सकता है, देन मेरी तरफ से उस इंसान को आई लव यू बोल देना, बिकॉज उस इंसान के होने से ही आपकी ज़िंदगी में खुशी है. अब जल्दी से मुझे बताओ कि आपकी ज़िंदगी में ये रोल कौन प्ले करता है. एंड टू टेल मी दैट, आप मुझे ढूंढ सकते हो इंस्टा पर या FB पर. एंड व्हाइल यू डू दैट, एक छोटी सी चीज़ जो मैं कितने अरसे से आपसे

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
2: द शो स्टार्ट्स इन
3: Why is Bollywood not making us curious often enough? यार देखो ट्रेलर आता है और दो मिनट में लगता है कि हमें तो सब कुछ समझ आ गया है. Formula सेम है, एक्शन सेम है, कॉमेडी सेम है, बस एक्टर्स नए हैं. लेकिन पिछले हफ्ते कुछ फिल्मों ने वाकई क्यूरियोसिटी जगाई है. हैवान ने कहा अब किलर अक्षय एक ब्लाइंड सैफ एंड प्रियदर्शन. टॉक्सिक ने कहा या तो ब्रिलियंटली गुड या तो टेरिफाइंगली बैड. और आवारापन 2 ने ऑलमोस्ट 20 साल पुरानी यादों को दोबारा जिंदा कर दिया. शायद लोगों को अब बड़ी फिल्में नहीं ज्यादा सरप्राइजिंग फिल्में चाहिए, क्योंकि थिएटर तक स्टार नहीं दोस्त, क्यूरियोसिटी खींच के लेके आती है. हाय, मैं हूं सुरेन एंड दिस इज अ मिर्ची टॉप 20, इंडिया का सबसे डेफिनेटिव हिंदी फिल्म म्यूजिक काउंटडाउन, जहां पे म्यूजिक से बड़ी होती है बातें. एंड स्टार्टिंग ऑफ नंबर 20 पर है कॉकटेल 2 का ये गाना, सॉन्ग बाय द किंग अरिजीत सिंह, ये है तुझको.
4: नंबर

तुझको के बाद नंबर 19 पर है एक ब्रांड न्यू एंट्री फ्रॉम राघव जुयाल की फिल्म भाई तेरा स्टार है। अमित त्रिवेदी का ये गाना है कॉल्ड रंग बरसे, नो कनेक्शन टू दी ओल्ड अमिताभ बच्चन क्लासिक। इसे गाया है राघव चैतन्य और शिल्पा राव ने एंड अल्फाज हैं कुमार भाई के। एक बहुत ही अच्छा गाना जो एक ऑर्डिनरी फिल्म से कई ज्यादा अच्छी फिल्में होना डिजर्व करता था। नंबर 19।

0: जाइए सजनायन धुरंधर इंडिया और पाकिस्तान को आज के नजरिए से देखती है, लेकिन आजादी के इस हफ्ते हम 80 साल पीछे जा रहे हैं, पार्टीशन तक, बंटवारे तक। अजीब बात है ना, 80 साल हो गए लेकिन हम अब भी उसी कहानी पर फिल्में बना रहे हैं। ट्रेन्स, सरहदें, बिछड़ते परिवार, छूटते हुए घर और वो लोग जिन्होंने एक मुल्क को पीछे छोड़कर दूसरे मुल्क में जिंदगी शुरू की। सब कह चुके हैं, सब दिखा चुके हैं, तो फिर अब नया क्या होगा। मेरे लिए बंटवारे पर फिल्म बनाने का असली चैलेंज यही है। इतिहास ने तो कहानी लिख दी है, अब सिनेमा को नजरिया ढूंढना है, क्योंकि ऑडियंस को दोबारा ये बताने की जरूरत नहीं है कि बंटवारे ने क्या छीना। हमें ये देखना है कि उसके बाद लोगों ने क्या बनाया। थिएटर्स में इस हफ्ते पार्टीशन पर एक और फिल्म आ रही है जिसे बनाया है राजकुमार संतोषी ने, एंड इट स्टार्स सनी देओल, एंड इसे प्रोड्यूस किया है आमिर खान ने। देखना यह होगा कि 80 साल बाद ये जो नया इंडिया है, क्या बंटवारे की उस कहानी को उतना ही प्यार देगा। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं उन फिल्मों की जिसमें बंटवारे को दिखाया है, तो एक फिल्म मुझे और याद आती है जहां पे एक ऐसा बच्चा जिसने अपना घर खोया, अपने परिवार को खोया और फिर दुनिया को अपना नाम याद करवा दिया, एक रेफ्यूजी जो इंडिया का एक महान एथलीट बना, मिल्खा सिंह। उनकी जिंदगी पर आधारित ये कहानी भाग मिल्खा भाग, और उसका सबसे पावरफुल गाना संग बाय सिद्धार्थ महादेवन, संगीत शंकर एहसान लॉय का, और लिखा है प्रसून जोशी ने। ये है जिंदा।
1: Pick of the week.

ब्रेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट. Only on Mirchi. It's hot. Number 7.

0: तुम यो बंधु कि वो केयर फ्री सी दुनिया जहां दोस्त हैं, रोमांस है, अ लाइफ थोड़ी सिंपल लगती है। करण जौहर ने अपनी पहली दो फिल्म्स में हमें इसी दुनिया का सपना दिखाया था। कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम, बड़े घर, बड़े इमोशंस, बड़े गाने। और फिर 2006 में करण ने खुद अपने बनाए हुए ड्रीम वर्ल्ड में एक दरवाजा खोला, कभी अलविदा ना कहना। एक ऐसी कहानी जहां शादी है, प्यार है, लेकिन प्यार के बावजूद लोग खुश नहीं है। इंडिया ने फिल्म को रिजेक्ट कर दिया था। किसी ने कहा इट वॉज अ ब्रेव फिल्म, किसी ने कहा ये तो एंटी संस्कारी है। करण खुद मानते हैं कि फिल्म थोड़ी ओवरब्लोन थी, लेकिन उसका दिल सही जगह पर था। शायद 20 साल बाद हम समझने लगे हैं कि वो क्या कहना चाहते थे। मेरा एक सवाल जरूर है, करण ने इनफिडेलिटी को जज नहीं किया, लेकिन क्या उन्होंने उसे पूरी तरह समझने की कोशिश की? क्योंकि वो कहानी के बीच में नहीं खड़े थे, वो बस दूर से देख रहे थे। लेकिन एक बात तय है, कभी अलविदा ना कहना के बाद करण जौहर ने कभी पहले जैसी फिल्में नहीं बनाई। वो उस फिल्म से पूरी तरह उबर नहीं पाए। 20 साल बाद उसी फिल्म का एक गाना जो शायद वक्त से कभी बाहर ही नहीं हुआ, तुम ही देखो ना, सोनू निगम अलका याग्निक की आवाज में। दिस इज माई स्पेशल रिक्वेस्ट ऑफ द वीक,
1: स्पेशल रिक्वेस्ट सॉन्ग।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
1: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची इट्स हॉट।
0: Only on Mirchi. It's hot. Number 5.

तबाही टॉप फाइव में आ गया है और उसी वक्त टॉक्सिक के ट्रेलर ने एक और सवाल खड़ा कर दिया है, भाई ये फिल्म है क्या? देखो मैंने ट्रेलर देखा और मुझे एक चीज समझ आ गई, ये फिल्म या तो ब्रिलियंटली गुड होगी या टेरिफाइंगली बैड होगी, बीच का कोई रास्ता दिख ही नहीं रहा है। कहानी है गोवा की, लेकिन वो गोवा नहीं जो हम पोस्ट कार्ड में देखते हैं, दोस्तों के साथ ट्रिप पे चले जाते हैं, ये 1960s के गोवा की कहानी है। इंडिया आजाद हो चुका था लेकिन गोवा अभी भी पोर्चुगीज के कंट्रोल में था, और इसी दुनिया में पावर है, ग्रीड है, गैंग्स हैं, और वायलेंस इतनी कि कभी कभी लगता है कि स्क्रीन भी खून से भीग जाएगा। और जो इस फिल्म में औरतें हैं, द वेमेन, जी हाँ, कैरेक्टर्स पावरफुल हैं, लेकिन उन्हें जिस तरह फ्रेम किया गया है, जिस तरह सेक्सुअलिटी और वायलेंस को उनके साथ मिक्स किया गया है, वो एम्पावरमेंट और ऑब्जेक्टिफिकेशन के बीच की जो लाइन है उसे बहुत अनकंफर्टेबल तरीके से ब्लर करती है। शायद इसलिए टॉक्सिक का ट्रेलर मुझे एक्साइट करने से ज्यादा इंट्रीग कर रहा है, क्योंकि मेन स्ट्रीम सिनेमा में इतना एक्सट्रीम होने की परमिशन खुद को बहुत कम लोग देते हैं। अब सवाल यह है कि ये मैडनेस सिनेमा बनेगा या सिर्फ मैडनेस ही रह जाएगा, ये तब पता चलेगा जब फिल्म बहुत जल्द थिएटर्स में आएगी। फिलहाल टॉक्सिक को हम साइड में रखेंगे और आगे बढ़ेंगे टू गुड ओल्ड फैशन बॉलीवुड। ये कॉमेडी फिल्म वेलकम टू द जंगल का गाना ऊंचा लंबा कद, व्हिच इज ऑन नंबर 4 दिस वीक। नंबर 4।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। नंबर 3।

यार इमरान हाशमी को भी बॉलीवुड ने एक अजीब सा गिफ्ट दिया है। वो हर बार हीरो बन के नहीं आए, कभी वो लवर बने, कभी गैंगस्टर, कभी एक जर्नलिस्ट, कभी वो आदमी जो खुद से ही हार रहा था। लेकिन हर बार उनके पीछे एक ऐसा गाना जरूर था जो पिक्चर से बाहर निकल गया।

जरा सा जन्नत से निकला था, लेकिन कितने लोगों की अपनी लव स्टोरी का बैकग्राउंड म्यूजिक बन गया। किसी को शायद वो पहली बार किसी के लिए फील करना याद आया, किसी को वो रात याद आई जब फोन हाथ में था और मैसेज भेजने की हिम्मत नहीं थी।

0: फिर आया बीते लम्हे और जिस सिन से गाना था द ट्रेन, उसकी कहानी पीछे रह गई, लेकिन हार्ट ब्रेक की कहानी में ये गाना आज भी फ्रंट रो में बैठा है।
1: बोल दो ना जरा, दिल में जो है छिपा, मैं किसी से कहूंगा नहीं।
0: और फिर बोल दो ना जरा, वो तो जैसे उन लोगों का गाना बन गया जिनके पास कहने को बहुत कुछ है, बस कह नहीं पाते। शायद इसलिए इमरान की सबसे बड़ी लेगेसी उनका बॉक्स ऑफिस नहीं रही है। इमरान की फिल्मों ने हमें अपने इमोशंस के लिए गाने दिए हैं। एंड देन ऑफ कोर्स यू गॉट आवारापन, उस लेगेसी में एक और खूबसूरत एडिशन। लेकिन इन सब के बावजूद एक चीज है जो बिल्कुल नहीं बदल रही। 37 हफ्तों से गाना इस काउंटडाउन पे मौजूद है एंड इट स्टिल इज नंबर 1 ऑन द मिर्ची टॉप 20, द अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ द काउंटडाउन वंस अगेन इज गहरा हुआ फ्रॉम धुरंधर बाय अरिजीत सिंह।
2: नंबर 1।

आज का एपिसोड सिर्फ काउंटडाउन नहीं था, एक बच्चे की कहानी थी जिसने अपना घर खोया और एक देश को नाम दिया। एक सवाल था कि 80 साल बाद हम क्या बन गए हैं, और कुछ गाने थे जो आजादी को सल्यूट नहीं करते।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियास नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

मुझे नहीं पता कि अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता, बट मुझे तो इन दोनों को देख के बहुत मजा आया. आई थिंक द एंटायर इंडिया लव्ड इट. पुरानी जीन्स पे हेलो वेलकम, दिस इज मी श्रेया. और रोज मैं एक फिल्म के बहुत सारे किस्से कहानियां लेकर के आती हूँ ना. आज आज जो फिल्म है वो डिम्पल कपाडिया की कमबैक फिल्म थी, लेकिन इस फिल्म की वजह से उन्होंने एक और बेहतरीन फिल्म छोड़ी थी, बिकॉज शी हैड ऑलरेडी गिवन डेट्स फॉर दिस फिल्म. अब ये कौन सी फिल्म थी बताओ बताओ. आफ्टर 14 ईयर्स बॉबी के बाद जब उन्होंने ये फिल्म की, उनका हीरो भी सेम था, लेकिन सिर्फ एक हीरो नहीं था इस फिल्म में, दो हीरोज थे. अब इससे ज्यादा क्लूज नहीं दे सकती हूँ, सोच के रखो, मैं गानों के उस पार बताती हूँ आपको. पुरानी जीन्स पे दिस इज मी श्रेया, यू आर लिसनिंग टू मी ऑन ऑफकोर्स मिर्ची, इट्स हॉट.

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

ये फिल्म पहले गई थी डिम्पल कपाडिया के पास और उन्होंने मना कर दी। इसलिए मना कर दी क्योंकि वो ऑलरेडी सागर को साइन कर चुकी थी। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ एंड वन फिल्म दैट वी ऑल लव्ड, वन फिल्म जिसमें हमें श्रीदेवी बहुत बहुत पसंद थी, बताओ कौन सी? सदमा। वो फिल्म जिसके लिए मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं नहीं देख पाती, अगर किसी भी चैनल पे आती है ना मैं नहीं देख सकती, बिकॉज उसका क्लाइमैक्स शेक्स मी। सो वो ना मुझे एक अच्छे खासे हैंगओवर में छोड़ के जाता है, तो मैं नहीं देखती हूँ। लेकिन ये फिल्म क्रिटिकली अक्लेम फिल्म जिसने श्रीदेवी के करियर में सबसे बड़ा बदलाव लाया और उसके बाद से उनको हिंदी फिल्में और ज़्यादा मिलने लगी थी। अब सदमा पहले गई थी डिम्पल कपाटिया के पास, बट डिम्पल कपाटिया ऑलरेडी एग्जैक्ट वही डेट्स दे चुकी थी सागर को, तो शी डिनाइड डूइंग द फिल्म। नाउ इन अ वे इट वाज गुड बिकॉज हमें श्रीदेवी द वेटरन एक्ट्रेस भी एकदम अलग ही अवतार में देखने को मिली, है ना। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, सागर की बातें हो रही आज, तो बस इस फिल्म के गाने भी होंगे। ऑल यू गॉट टू डू इज सिट बैक एंड रिलैक्स, कहीं भी मत जाना। मैं हूँ श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में। अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।
3: हिट हिट हिट हिट गाना।
2: हिट

only on Radio Mercy, New York. It's hot. आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

ये वाला सीन तो मतलब पूरा इंडिया नहीं भूल सकता। पुरानी जीन्स पे है आप श्रेया के साथ, और सागर की बात हो, डिम्पल कपाटिया का ये सीन की बात नहीं हो, ये कैसे हो सकता है? वेल, द फ्लीटिंग टॉपलेस सीन जो उन्होंने किया, जब एक गाना शूट होता है और उनका जो टॉप है वो चट्टान में फंस जाता है, एंड शी सडनली गेट्स अप एंड ओहो। तो सागर की बातें करते करते इस फिल्म के सारे किस्से जो हैं वो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी, क्योंकि देखो भाई, मैं अपना होमवर्क बहुत अच्छे से करके आती हूँ। अच्छा, इस फिल्म में इवन दो ऋषि कपूर वॉज द मेन कैरेक्टर, फिर भी ही वॉज एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड। क्यों? उसके पीछे एक मेजर रीजन था। रीजन तुम्हें तो बताइए, मैं ऐसे नहीं बताती हूँ, कभी कभी आपको ऐसे सस्पेंस में छोड़ के जाने में मुझे बड़ा मजा आता है। तो गाने सुन करके वापस आओ, अभी शेयर करूंगी। दिस इज मी श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

ऋषि कपूर इसलिए डिसअपॉइंटेड थे क्योंकि उनको लगा था कि ये जो फिल्म है ये बॉबी के फेमस होने के बाद, पॉपुलर होने के बाद, हिट होने के बाद आ रही है। इसमें डिम्पल कपाडिया और ऋषि कपूर की केमिस्ट्री जो है वो एकदम बॉबी जैसी रिपीट होगी, विच डिड नॉट हैपन। ही एक्चुअली अक्यूज द डायरेक्टर रमेश सिप्पी, उन्होंने बड़ी सारी फिल्म मैगजीन्स में उस टाइम पे इंटरव्यू दिया कि उनके कैरेक्टर को और ज़्यादा डिटेल में दिखाया जा सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि रमेश सिप्पी फोकस्ड मोर ऑन शोइंग यू नो द कम बैक ऑफ डिम्पल कपाडिया। इस चक्कर में उनका कैरेक्टर साइडलाइन हुआ और ही डिड नॉट गेट द लॉरल्स फॉर द फिल्म। इट वॉज डिम्पल। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ एक आर्टिस्ट भी आए थे इस फिल्म के प्रीमियर पे, वो कौन थे और कितने अलग ढंग से वो आए थे ये इंटरेस्टिंग बताऊंगी वापस श्रेया के साथ ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

उस समय के अखबारों की ये सबसे बड़ी खबर हुई थी। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ और आज बात हो रही है सागर की। इट वॉज अ कमबैक फिल्म डिम्पल कपाडिया की। 14 साल के बाद वो फिर से कैमरा फेस कर रही थी, मतलब बॉबी करके वो काका यानी राजेश खन्ना के साथ बस शादी में सेटल हो गई थी और उसके बाद उन्होंने फिल्म को टाटा बाय बाय कह दिया था। आफ्टर 14 ईयर्स शी मेड अ कमबैक विद द फिल्म ऑफ कोर्स सागर एंड रमेश सिप्पी वाज डायरेक्टिंग द फिल्म। अब जब इस फिल्म का प्रीमियर रखा गया तो उसके मेन हीरो फिल्म के लीड्स यानी ऋषि कपूर या फिर कमल हासन नहीं थे, बल्कि पता है कौन थे? एमएफ हुसैन साहब, द रिनाउंड पेंटर एमएफ हुसैन साहब। वो इस फिल्म का प्रीमियर बेयर फुट नंगे पैर देखने आए थे और फिल्मी मैगजीन्स ने, न्यूज़पेपर ने बड़े बड़े आर्टिकल्स इस पे लिखे थे। पुरानी जीन्स पे आज इसी फिल्म की बातें विद मी श्रेया। वापस आओ और भी करेंगे।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: सुनो सुनो, अरे सुनो सुनो, ए भाई और बहनों, अरे मगन भाई छगन भाई सांबड़ो रे सांबड़ो, ओ राघोबा ओ धोंडीबा, आई का ओ कर्नल सिंह, ओ कर्नल सिंह, अरे तुझी भी सुनो पापे।

कहते तो ये भी है कि उस समय रमेश सिप्पी एंड डिंपल कपाटिया दोनों का अफेयर हुआ था ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ द फिल्म। पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ सागर फिल्म की बात हो रही है, एक ऐसी फिल्म जो 14 साल के बाद फिर से डिंपल कपाटिया को बड़ी स्क्रीन पे दिखाने वाली थी, क्योंकि उससे पहले तो डिंपल कपाटिया ने बॉब भी की और मेजर हिट हुई, स्मैशिंग हिट हुई एट द बॉक्स ऑफिस, लेकिन फिर वो राजेश खन्ना के साथ शादी करके सेटल कर गई और फिर उसके बाद रमेश सिप्पी की इस फिल्म से उन्होंने कमबैक किया। अब सिप्पी साहब और डिंपल कपाटिया का अफेयर हुआ और इसके बारे में सबने जम करके लिखा। रमेश सिप्पी चाहते थे कि डिंपल कपाटिया सागर फिल्म करें और ना कि सदमा करें, सदमा भी उनको ऑफर हुई थी और भाई डिंपल कपाटिया ने हाँ कह दी। इस बात को लेकर के भी फिल्मी मैगजीन्स ने बहुत कुछ लिखा था। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया, आज इसी फिल्म की बातें बैक टू बैक इस फिल्म के गानों के साथ भी, तो बस वापस आओ

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में। अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: होगा कालिया।
1: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
0: अब
2: मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

ऐसा बहुत कम बार होता था उस टाइम पे, क्योंकि एक्टर्स के बीच में ना बहुत राइवलरी होती थी। जब एक एक्टर दूसरे एक्टर की खुल करके तारीफ करे, और कमल हसन ने सागर फिल्म में ऋषि कपूर के लिए किया। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म सागर टुडे। वेल, कमल हसन ने ऋषि कपूर की जम करके ऑन स्टेज तारीफ की। उन्होंने कहा कि उन्होंने इतने एक्टर्स को देखा है, इतने एक्टर्स से मिले, लेकिन ऋषि कपूर एक्सट्रीमली हैंडसम, एक्सट्रीमली गुड लुकिंग है। एंड ही ऑल्सो वेंट ऑन टू से कि ऋषि कपूर को खुद नहीं पता है कि वो कितने कमाल के लगते हैं, और लोगों का दिल, लड़कियों का दिल वो कैसे चुरा लेते हैं जैसे ही ऑन स्क्रीन आते हैं। वैसे कमल हसन इस फिल्म के लिए दो कैटेगरीज में फिल्म फेयर अवार्ड्स की नॉमिनेट हुए थे। कौन सी थी वो दो कैटेगरीज और किसके लिए जीते? आई विल लेट यू नो, कम राइट बैक। मैं हूं श्रेया ऑन पुरानी जीन्स।

कमल हसन गॉट नॉमिनेटेड इन बोथ द कैटेगरीज। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ, सागर फिल्म की बात हो रही है और कमल हसन को ना दोनों कैटेगरीज में नॉमिनेशन मिला था इन फिल्म फेयर। ही गॉट नॉमिनेटेड इन द बेस्ट एक्टर कैटेगरी, ऑल्सो इन द बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर कैटेगरी, और जीता किस में उन्होंने? बेस्ट एक्टर। मतलब ये तो एक्चुअली में विन एंड विन सिचुएशन थी कि भाई एक्टर भी है, सपोर्टिंग एक्टर भी है, एक ना एक अवार्ड तो उनके नाम होना ही था। बट यस, इट वेंट टू बी बेस्ट एक्टर वाली कैटेगरी। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ अभी इस फिल्म के गाने शुरू करते हैं। कम राइट बैक।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियास नंबर वन रेडियो स्टेशन. इट्स हॉट.
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट. आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

बैक टू बैक एक्शन फिल्मों के बाद रमेश सिप्पी साहब को लगा कि भाई मैं भी प्यार में हूँ तो कुछ प्यार भरा बनाए। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म सागर टुडे। वेल, रमेश सिप्पी साहब ने ना 3 फिल्में बैक टू बैक बना डाली थी एक्शन की, यानी शोले में 1975, वेल देन शान हैपेंड इन 1980, उसके बाद उनकी तीसरी फिल्म थी शक्ति 1982, और ये तीनों सुपर डुपर हिट फिल्म थी। बट कहते हैं कि सागर के टाइम पे रमेश सिप्पी वॉज इन लव, वॉज हैविंग एन अफेयर विद डिम्पल कपाडिया एंड ही वॉन्टेड टू शो डिम्पल जी इन यू नो इन अ रोमांटिक एंगल, एक ऐसी फिल्म जिसमें रोमांस दिखे। तो उन्होंने इन तीनों

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म सागर टुडे। 14 इयर्स के बाद जिस फिल्म से अपना कमबैक किया था डिंपल कपाटिया ने। अच्छा, फिल्म की बातें तो बहुत सारी होती रहेंगी, लेकिन मैं चाहती हूँ आप इस समय ये सुनो। और इसमें पंचमदा का ये गिटार है शायद, ये जो इस गिटार को वो स्ट्रम कर रहे हैं, अभी बड़ा खूबसूरत सा एक पीस आएगा, वो भी सुनिएगा। आर डी बर्मन साहब के कॉम्पोजिशन, जावेद अख्तर साहब के लिखे हुए ये लाइन, सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। कमिंग अप राइट नेक्स्ट, डिंपल कपाटिया की आंखों पे लिखा गया था ये गाना।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
1: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

रानी जीन्स पे अब श्रेया के साथ सागर फिल्म की बात हो रही है और अगला गाना ये ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। सो इस गाने में डिंपल कपाटिया इज वेयरिंग वेरी ब्यूटीफुल ड्रेसेस। हाँ, पूरे गाने में उन्होंने ड्रेसेस पहनी है और सागर किनारे बहुत सिंपली शूट किया गया ये गाना। ऋषि कपूर और डिंपल कपाटिया की केमिस्ट्री तो वैसे ही बॉबी में हमने देख ली थी, एकदम यू नो पर्दे पे आग लगा देती थी इन दोनों की केमिस्ट्री। सो दे डिडंट हैव टू पुट इन अ लॉट ऑफ स्टेप्स, तो कैजुअली बस हल्का फुल्का डांस करते हुए एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल करके ये गाना जब आता है ना, सागर किनारे दिल ये पुकारे, ओहो हो। किशोर दा और लता जी के पास पंचम दा की ऑफ कोर्स धुन है कमिंग अप राइट नेक्स्ट।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।
2: हिट हिट हिट हिट गाना।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक फिर लो पान चबाए आहा। अरे

पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ जाने का टाइम यानी लेट्स हिट द हाईवे। ऑलराइट, आज का मेरा हाईवे हिट डेडिकेट करना चाहती हूँ उन लोगों को जिन्हें बादलों से थोड़ा डर लगता है और बादल के गरजते हुए को वो एक एक्सक्यूज लेते हुए सामने वाले से चिपक जाते हैं। हाउ रोमांटिक। वैसे मेरी लाइफ में ये सिचुएशन नहीं आई। हमेशा मैंने ऐसी सीन्स को या ऐसे गानों को देख करके सोचा है ना कि कभी तो ऐसा होगा कि कोई बादल गरजेगा और कोई मेरे साथ ऐसा होगा जिससे मैं चिपकना चाहूँगी, बट इट हैज़ नेवर हैपेंड। बट एनीवे, आई विल कीप होपिंग कि ऐसा रोमांटिक सिचुएशन श्रेया की लाइफ में भी आए। ऑन दैट नोट, गुड नाइट, टेक केयर, आई विल सी यू टुमारो, एंड ख्याल रखो अपना। और मुझसे कुछ कहना है ना तो फेसबुक या इंस्टा पे आरजे श्रेया विद लव इज माई हैंडल, वहाँ पे बस DM कर देना।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: सुनता है सबकी, करें उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन। इट्स हॉट।

0: समय बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन।

गगन घिरे बदरा, सगन लता पेड़ों से डगर डगर वन उपवन, छाया है अंधियारा। गगन घिरे बदरा, सघन लता पेड़ों से डगर डगर वन उपवन, छाया है अंधियारा।

तन्हाई, ले जाओ इसको घर राधे, ले जाओ इसको घर राधे, ले जाओ इसको घर। देश मान कर चली राधिके ले माधव को, यमुना तट लीला निकुंज में राधा माधव की यह लीला, राधा माधव की लीला सर्वोत्तम हो।

0: है सबकी, करें उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर 1 रेडियो स्टेशन। इट्स हॉट।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन। इट्स हॉट।

0: है सबकी, करें उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर 1 रेडियो स्टेशन। इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: अपने फियर्स को समझकर उनका सामना कैसे करें, आइए इस बात को समझे।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, मेरा एक दोस्त है जो हम बचपन में ना एक ही कंप्यूटर कोर्स किया करते थे। मुझे याद है कि एक बार हमें एक प्रोजेक्ट दिया गया था, और वो प्रोजेक्ट को जब प्रेजेंट करने का टाइम आया तो मेरा दोस्त गया स्टेज पे और उसको प्रेजेंट करना था। वो ज़्यादातर थोड़ा लोगों को फेस करने में डरता था। तो जब उसको प्रोजेक्ट प्रेजेंट करना पड़ा, मैंने देखा कि वो जो प्रोजेक्टर का जो लाइट था उसमें मुझे नज़र आया उसके हाथ कांप रहे थे। तो हाथ कांपना जो आप कह रहे थे कि ज़्यादातर ऐसा नहीं है कि वो एक मानसिक बीमारी जो आपके शरीर तक जा रही, कभी कभी आप इतने नर्वस हो जाते हैं क्योंकि आप यूज्ड टू नहीं है लोगों के सामने कुछ प्रेजेंट करना, तो नर्वसनेस के कारण आपके हाथ कांपने लगते हैं, ये आपके कंट्रोल में नहीं होता।
4: नर्वसनेस भी तो मन की कमजोरी है ना।
3: लेकिन हर सिचुएशन में मैं नर्वस नहीं होता, जब लोगों को फेस करना पड़ता है तब मैं, अरे यार,
4: क्योंकि उसमें किसी अलग प्रकार का फियर है। देखो, फियर कमजोर मन की रचना है
3: जी।
4: अब यहाँ पर फियर, जब आप लोगों को फेस कर रहे हैं तो आपको फियर क्या है? आपको फियर रिजेक्शन का हो सकता है।
3: हाँ।
4: आपको फियर जजमेंट का हो सकता है।
3: ओके।
4: आपको फियर क्रिटिसिज्म का हो सकता है।
3: हाँ।
4: आपको ये फियर है कि लोगों को पसंद आएगा कि नहीं आएगा।
3: हाँ।
4: वही चीज जब आप लोग नहीं होते,
3: आप बड़ी आसानी से कर लेते हैं
4: तो आपको किस चीज का फियर है उस चीज को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ये जो स्टेज फियर है या पब्लिक फियर है, ये बेसिकली फियर ऑफ रिजेक्शन होता है। कि मुझे फियर है कि मैं जो कर रहा हूँ वो लोगों को पसंद आएगा, नहीं पसंद आएगा, रिजेक्ट तो नहीं करेंगे। और कभी कभी लोग कुछ भी नहीं कर रहे होते।
3: हाँ, हमने ही अपने दिमाग में क्रिएट किया
4: होता है। हमने ही अपने दिमाग के अंदर क्रिएट किया होता है।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए। इट्स अ जर्नी। चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: क्या नर्वसनेस हमेशा वीकनेस होती है या कभी कभी यही नर्वसनेस हमें बेटर परफॉर्म करने के लिए प्रिपेयर करती है? आइए इस पर्सपेक्टिव को समझें।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: कभी कभी सिस्टर ऐसा होता है कि एक क्रिया आपने बहुत बार की है, अपनी इंसान है वो बहुत रेगुलरली स्टेज पे जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा एक मकाम आता है जब वो स्टेज पे जाता है ना, तो उसके हाथ पैर थोड़े कांपने लगते हैं। इट इज नॉट कि मुझे ऑडियंस को फेस करने में डर है, इट्स नॉट अ फियर ऑफ रिजेक्शन, क्योंकि बहुत बार कर चुका हूँ ये। मैंने 500 शोज किए हैं, तो अब मुझे रिजेक्शन का डर नहीं है। कभी कुछ शोज अच्छे होते हैं, कुछ शोज बुरे होते हैं, तो ये भी पता है। लेकिन फिर भी ना, शायद उस मौके का बड़प्पन है, या बहुत बड़ा दिन है, या बहुत सालों बाद आप स्टेज पे आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हाथ कांपना। हमारे एक डायरेक्टर साहब तो कहते हैं कि स्टेज फियर होना बहुत जरूरी है ताकि तुम उसको आसानी में ना लो, लेकिन इतना भी फियर नहीं होना चाहिए कि आपकी परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करे।
4: सी, मे बी वो ये कहना चाह रहे थे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। कभी कभी हम शब्द गड़बड़ कर देते हैं। फियर तो नेगेटिव एनर्जी है।
3: सही बात।
4: अगर कोई भी नेगेटिव एनर्जी होगी वो आपकी परफॉर्मेंस को एनहांस नहीं कर सकती। पर कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है,
3: वो नहीं होना चाहिए।
4: तो आपको उस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि अगर आपको ये मौका मिला है तो आपको अपना 100% देना है। आपने बहुत बार किया है, आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए, फियर है कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं है। और बहुत बार करने के बाद कई बार वो ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि जितना प्रिपरेशन आपको करना चाहिए था, जो हार्डवर्क आपको करना चाहिए था, जो आपकी सिंसेरिटी होनी चाहिए थी, वो भी नहीं, आपने उसको ग्रांटेड ले लिया। तो शायद उनका वो भाव था। लेकिन बहुत बार करने के बाद भी अगर आपको नर्वसनेस हो रही है तो भी वो कोई और फियर हो सकता है, पर है वो अपने मन का ही कुछ। समझो आपको ये नहीं है कि लोग क्या सोचेंगे, पर आपको अपने से एक्सपेक्टेशन है कि आज बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ा मुकाम है, मैंने इसके लिए बहुत इंतजार किया था, आज नहीं मैं गड़बड़ कर सकता।
3: सही बात। वो अपने आप पे प्रेशर डाल,
4: तो आप अपने आप पर प्रेशर डाल रहे हैं। बना आपको ये फियर नहीं है कि लोग क्या कहेंगे, पर आप इस फियर में है कि
3: अगर
4: मैं कैसा करूंगा। बट समवेयर इट इज इंटरनली क्रिएटेड।
3: सही बात।
4: और आप पकड़ लेंगे उसको, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप थोड़ा सा साइलेंटली बैठेंगे, अपने साथ रिश्ता जोड़ेंगे, अपनी कॉन्वर्सेशन को सुनने की कोशिश करेंगे, आप रियलाइज करें और फिर जेंटली उसको ट्रांसफॉर्म करें। उसको ट्रांसफॉर्म करना जरूरी है कि मैंने मेहनत करी है,
3: सब सही होगा,
4: मैं अपना बेस्ट दूंगा, आउटकम मेरे हाथ में नहीं है।
3: बहुत बढ़िया।
4: कर्म मेरे हाथ में है, मैंने हार्डवर्क किया है, मेहनत की है, आई विल गिव इन माई बेस्ट, फिर देखेंगे क्या होगा। ऐसे अगर आपको लोगों का डर है तो भी आप अपने साथ बात करें कि अगर ये सामने 50 बैठे हैं सबको पसंद आएगा ये जरूरी नहीं है। मुझे मेरा कर्तव्य करना है, किसी को बहुत अच्छा लगेगा, कोई अप्रिशिएट भी करेगा, कोई क्रिटिसाइज भी करेगा, पर उसका प्रेशर लिए बिना मुझे अपना बेस्ट परफॉर्म करना है। सो सेल्फ टॉक, सेल्फ काउंसलिंग इसमें बहुत हेल्प करती है।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: सिस्टर, दिव्यांशु ने एक सवाल लिख के भेजा है कि तनाव में मेरे हाथ बहुत कांपने लगते हैं और कभी कभी इसी वजह से मुझसे गलती हो जाती है। अगर कोई उस समय सबके सामने अपमान करे तो क्या चुप रहना सही है या अपने सम्मान के लिए जवाब देना चाहिए?
3: दो बातें हैं। पहले तो जो वो तनाव से गुजर रहे हैं उसको हील करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो तनाव अभी नॉर्मल नहीं लग रहा है, बॉडी पर इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है। पहले आपके मन पर होता है लेकिन उसका इम्पैक्ट अभी हेल्थ तक आने लगा है, तो इसलिए उनको कोई ना कोई थेरेपी या कुछ उसका करना चाहिए। देखो, तनाव आप क्रिएट कर रहे हैं, प्रेशर बाहर से हो सकता है, चाहे वो टारगेट का है, डेडलाइन का है, कंपटीशन का है, और प्रेशर हर दिन बढ़ने हैं, लेकिन उस प्रेशर को कैसे फेस करना है उसकी इनर रेजिलियंस आपको डेवलप करनी है। अगर आप रेजिलियंस नहीं डेवलप करते, अपने को शक्तिशाली नहीं बनाते, तो उसका मन पर प्रभाव पड़ता है। तनाव आप क्रिएट कर रहे हैं, क्या होगा, कैसा होगा, होगा नहीं होगा, जॉब रहेगी, छोड़ तो नहीं देंगे, बॉस क्या कहेगा, ये सब आप क्रिएट कर रहे हैं। तो आप अपने स्ट्रेस को पहले उसको कैसे मैनेज करना है और फिर कैसे उससे फ्री होना है, वो एक चीज़ है। दूसरी चीज़ जो आपने कही कि अगर कोई अपमान करे तो बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, कुछ भी बोलना है सभ्यता से बोलो। एक चीज़ ये है, कुछ भी आपको बोलना है सभ्यता से बोलो। दूसरी चीज, जिस समय आप बोल रहे हैं क्या सामने वाला सुनने के स्थिति में
2: है कि नहीं,
3: अगर उसको आपके बात समझ में नहीं आ रही, कुछ भी करते हैं ना तो अपने को पूछना चाहिए इससे मुझे रिजल्ट क्या चाहिए, और फिर देखना चाहिए कि मेरे इस कर्म से वो रिजल्ट आएगा भी। अगर आपके उस कर्म से उस समय वो रिजल्ट आने ही नहीं वाला तो उस समय चुप रहना बेटर है,
2: बाद में जाके बोलना चाहिए,
3: बाद में जरूर बात करें। कभी कभी उस समय चुप रह रहे हैं लेकिन वो चुप कमजोरी नहीं है, वो विजडम है, वो वीकनेस नहीं है।
2: हाँ बिल्कुल, बहुत खूबसूरत
3: लग रहा होगा कि वो वीकनेस है पर वो विजडम है, क्योंकि आपको पता है कि आप सड़क पर बीज फेंकेंगे तो उसमें कोई फल थोड़ी ना निकल आएगा।
2: फेंकने वाली बात से याद है कि रतन टाटा साहब ने एक बार बोला था कि टेक द स्टोन्स दैट पीपल थ्रो एट यू एंड बिल्ड अ मॉन्यूमेंट आउट ऑफ इट।
3: राइट,
2: तो जरूरी नहीं है क्योंकि मैं चुप हूँ इसका मतलब मैं वीक हूँ या मैं गलत हूँ।
3: चुप रहना वैसे भी कभी वीकनेस नहीं होती, उसमें बहुत सहन शक्ति लगती है, बट उसको आप सफर नहीं करें, आप उसको दबा नहीं लें, आप जरूर एक्सप्रेस करें राइट टाइम पर। आपका फ्रेम ऑफ जो
2: जब राइट हो
3: वो भी राइट हो, उनका भी राइट हो।
2: सही बात,
3: तो आपकी हाँ दोनों जरूरी है। और अंदर में जो भाव होना चाहिए वो प्रूव करने का नहीं है, कोई सिद्ध करने का नहीं है, आप जेन्युइनली अपनी बातों को एक्सप्लेन करना चाहते हैं, तो सही समय देख करके अपनी बात जरूर करनी चाहिए।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: सिस्टर, डॉक्टर नीताबा ने एक सवाल भेजा है कि पति से 5 साल से अलग रह रही हूँ, उनके चीटिंग की वजह से आज भी बहुत तनाव में रहती हूँ, कोई गलती मेरी नहीं थी फिर भी मन उसी दर्द में अटका रहता है, इस दर्द से बाहर कैसे निकलूं?
3: चीटिंग हस्बैंड ने किया है
2: जी,
3: दर्द आपने क्रिएट किया है। आप भले जीवन भर भी उनको ब्लेम कर सकते हैं, आई एम नॉट सेइंग कि उनका कर्म राइट है,
2: सही बात,
3: पर हमेशा हमें ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि हर्ट हमारे लिए नहीं कोई क्रिएट कर सकता है. अब उस सर्कमस्टांसेस में आपको कैसे आगे बढ़ना है ये आपकी चॉइस है.
2: सही बात.
3: किसी ने आपको चीट किया वो गलत है. अब आपको डिसाइड करना है. पहले तो आपको अपने को हील करना है और अपनी हीलिंग के लिए आपको कहना पड़ेगा आई चोज टू ट्रस्ट दैट पर्सन. और अगर दोबारा भी मुझे चांस मिलेगा तो शायद हम ट्रस्ट ही करेंगे.
2: शायद हाँ.
3: हम करेंगे ना, फर्स्ट टाइम पर हम किसी को डाउट क्यों करेंगे. चीट करना उनकी नेचर है, ट्रस्ट करना मेरी नेचर है. तो हम जब किसी को ट्रस्ट करते हैं तो हम अपने लिए करते हैं.
2: सही बात.
3: हम उनके लिए नहीं करते हैं क्योंकि दैट इज द मोस्ट कंफर्टेबल फीलिंग फॉर मी, सो आई डिड इट फॉर माई सेल्फ. अब उसके बाद अगर ऐसा हुआ ठीक है, जीवन है. जीवन में आप कभी किसी को ट्रस्ट करते हैं, कोई आपको बिजनेस में भी चीट कर देता है, कोई रिलेशनशिप में भी चीट कर देता है. नाउ अब आपको चूज करना है आपको आगे कैसे बढ़ना है.
2: सही बात.
3: व्हाट इज द नेक्स्ट राइट मूव. तो पहले जो हर्ट क्रिएट किया है वो कैसे क्रिएट किया, ऐसा क्यों किया मेरे साथ, ऐसा क्यों हुआ, एम आई नॉट वर्दी. आप अपने को, आप इस प्रकार के थॉट्स में चले जाते हैं, मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं केपेबल नहीं हूँ, मैं टैलेंटेड नहीं हूँ, मेरे साथ उन्होंने ऐसा क्यों किया. ये सब नहीं सोचे. आप बहुत वर्दी होंगे, केपेबल होंगे, यूनिक होंगे, ब्यूटीफुल होंगे, लेकिन चीट करना उनका
2: कर्म था,
3: उनका संस्कार है. वो उनकी नेचर है. इट हैज नथिंग टू डू विद यू. जैसे लोग बिहेव करते हैं वो उनका संस्कार होता है. हाँ, एक कारण कई बार हो सकता है, कभी कभी किसी रिश्ते में अगर बहुत समय से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, आपस में रिलेशनशिप हारमोनियस नहीं है, तो उस रिश्ते में किसी के मन में वॉइड आ जाता है, खालीपन है. आप उस खालीपन को कहीं और से भरने की कोशिश करते हैं जो राइट नहीं है. लेकिन जब हम कमज़ोर होते हैं तो फिर हमें जहाँ से प्यार मिल रहा है, जहाँ से अपनापन मिल रहा है, जहाँ से अंडरस्टैंडिंग मिल रही है, हम वहाँ डिपेंड हो जाते हैं और हमारे से कोई भूल हो जाती है. तो ये भी एक बार चेक करें कि वो रिश्ता कैसा था. अगर बहुत समय से उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट थी, वॉइड था, इससे उस व्यक्ति से गलती हो जाती है, गलती, वो गलती है, हम उसको राइट नहीं कह रहे हैं. अब पहला है कि आप अपने को हील करें और फिर अपने से पूछें कि आपको सेकंड चांस देना है कि नहीं देना है. वो तो फिर हर एक की अपनी चॉइस है.
2: आपने एक बहुत अच्छे शब्द का इस्तेमाल किया, आपने कहा ये चॉइस है हमारे पास. और इसी एग्जैक्ट विषय पे एक होलोकॉस्ट सर्वाइवर हैं, उनका नाम है एडिथ एगर. उन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है द चॉइस. और वो कहते हैं कि हर सिचुएशन में प्रतिक्रिया के बजाय हमको ये देखना कि हमारे पास क्या चॉइस है. बहुत खूबसूरती से लिखते हैं, तो कभी मौका मिले तो जरूर ये किताब पढ़िए.
3: ये दो शब्द बहुत पावरफुल है. माय चॉइस, सारी लाइफ चॉइस है.
2: सही बात.
3: आपको हर्ट होना है, हील होना है, आपको ट्रस्ट करना है, डाउट करना है, आपको सेकंड चांस देना है, नहीं देना है. आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी.
2: सही बात.
3: और जो आप चूज करते हैं वैसी आपकी लाइफ बनती जाती है, वैसी आपकी डेस्टिनी बनती जाती है. लेकिन इस केस में क्या है, ये 5 साल से अलग भी है, हर्ट भी हो रहे हैं, तो वो ठीक नहीं है. यू आर चूजिंग हर्ट को. आप डिसाइड करें आपको क्या चूज करना है.
0: Recharge Mantra with Vishal Sethia and Brahma Kumari, Sister Shreya, only on Mirchi.
3: करते हैं वैसी आपकी लाइफ बनती जाती है, वैसी आपकी डेस्टिनी बनती जाती है. लेकिन इस केस में क्या है, ये 5 साल से अलग भी है, हर्ट भी हो रहे हैं, तो वो ठीक नहीं है. यू आर चूजिंग हर्ट को. आप डिसाइड करें आपको क्या चूज करना है.
0: Recharge Mantra with Vishal Sethia and Brahma Kumari.

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: सिस्टर, एक अनोनिमस सवाल आया है। लिखते हैं कि बिना किसी गलती के हमें और हमारे बच्चों को दूसरों की वजह से दुख सहना पड़ता है, तो मन में बार बार यही सवाल आता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। इस दर्द को छोड़कर जिंदगी में आगे कैसे बढ़े?
3: कुछ भी ऐसा नहीं है जो बिना कारण से हो रहा है। कई बार हमें लगता है अगर हमारे जीवन में कोई दुख आ भी रहा है, मेबी इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट, लेकिन वो मेरा ही कमाया हुआ होता है।
2: सही बात है,
3: पर कोई ना कोई निमित्त बन जाता है। हमें लगता है ये हमें दुख दे रहा है, पर ये तो जैसे संसार का एक नियम है, सुख दुख का जो नियम है, जो कर्म हमने किया है वही किसी ना किसी रूप में लौट करके आता है।
2: सही बात।
3: पर होता क्या है कि हम अपनी जर्नी को बर्थ से डेथ के बीच में देखते हैं, तो हमें कई बार कुछ गलत नहीं दिखाई देता, पर कर्म शरीर नहीं करता है, कर्म आत्मा करती है। इसलिए पाप आत्मा पुण्य आत्मा टाइटल दिया जाता है, एंड व्हेन यू टेक नेक्स्ट बर्थ वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। तो इसलिए कभी कभी जीवन में हमें बहुत सारी ऐसी भी प्राप्तियां होती हैं जिसके लिए हमें लगता है हमने तो कोई इतना एफर्ट किया ही नहीं है।
2: ये कैसे मिल गया?
3: किसी को देखो, कोई शरीर से परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट शरीर है, परफेक्ट परिवार है, कई चीजें, बहुत सारी चीजें आपको मिली होंगी, उसके लिए हम कभी क्वेश्चन नहीं करते कि हमें क्यों मिला है, लेकिन वो भी हमारे पुण्य का ही फल है। पर अगर कहीं से दुख मिल रहा है, पहले तो दुख हम क्रिएट करते हैं, चैलेंज हो सकता है।
2: सही बात।
3: कोई बिना कारण से अपमान कर रहा है, कोई बिना कारण से तंग कर रहा है, अब उसको कैसे डील करना है वो आपके ऊपर है, लेकिन ये नहीं सोचे मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जो कुछ हो रहा है एक्यूरेट है, इसलिए हम गीता का भी कहते हैं ना, जो हुआ वो भी सही है, जो हो रहा है वो भी सही है, और जो होगा वो भी सही है, वो एक्यूरेट है। अब आप ये देखें कि उसको फेस कैसे करना है, उससे अफेक्ट कैसे नहीं होना है, बाकी कुछ भी बिना कारण के नहीं होता है।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए। इट्स अ जर्नी। चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची। इट्स ऑल।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: सिस्टर, दीपाली जी का सवाल है कि मैं एक लड़की हूँ और मुझे लड़कों की तरह रहना पसंद है, इस वजह से लोग खासकर लड़कियाँ मेरा मजाक उड़ाती हैं। मैं इस बात को लेकर बहुत ज्यादा ओवरथिंक करती हूँ, क्या मैं गलत हूँ?
3: हमने पहले भी इन चीजों पे कई बार बात की। इसमें क्या होता है कि सोसाइटी से हमें एक्सेप्टेंस चाहिए और कभी कभी ये चीजें सोसाइटी के लिए थोड़ी नई है। सोसाइटी इनके बारे में अवेयर नहीं है, एजुकेटेड नहीं है। थोड़ी बहुत अवेयरनेस बढ़ रही है लेकिन तो भी बहुत कम है। टैबू भी है, इसको गलत तरीके से भी देखा जाता है। इसलिए ये चीज वेट करना कि सोसाइटी आपको एक्सेप्ट करे, पहले आप अपने को एक्सेप्ट करना शुरू करें।
2: ये बहुत जरूरी है।
3: हम डिफरेंट हैं पर हम हर एक यूनिक हैं, हम हर एक वर्दी हैं। पीपल हमें उतनी ही वर्थ दे पाते हैं जितने वो केपेबल हैं।
2: जितने वो केपेबल हैं
3: वो हमें उस तरह से नहीं ट्रीट कर पाते जितने हम केपेबल है।
2: सही बात है।
3: जितना आपके पास है आप उतना ही तो दे पाएंगे। दे गिव आउट ऑफ देयर कैपेसिटी, देयर केपेबिलिटी। तो अगर किसी को अंडरस्टैंडिंग नहीं होती या उन्होंने शुरू से वो करते हुए देखा होता है, मजाक बना रहे हैं या कुछ ऐसे टर्म्स यूज कर रहे हैं या आपको थोड़ा सा नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आई नो इट इज टफ। हर एक को प्यार, काइंडनेस, रिस्पेक्ट चाहिए, बट दैट इज द मोमेंट व्हेन यू ट्रीट योरसेल्फ विद रिस्पेक्ट। और बाकी तो इन चीजों की अवेयरनेस बढ़ रही है। आप भी इन चीजों की अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं। आप भी अपने को इतना एजुकेट करें, क्योंकि धीरे धीरे अगर आप सोसाइटी के अंदर भी देखें तो जो डिफरेंट थे उन्होंने ही एजुकेट करना शुरू किया।
2: They brought about the change.
0: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.

हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: हमें जज क्यों किया जाता है? चलिए इसे समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: आज सुबह जब मैं घर से निकल रहा था तो मेरी वाइफ ने मुझे, नॉर्मली वो प्यार से विदा करती है, कहती है बेस्ट ऑफ लक, उसने आज कहा तुमने शेव क्यों नहीं किया, और मैंने कहा अरे मैं भूल गया। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, शक्ल पे अगर ज्यादा बाल भी आ गया, इंसान तो वही रहा ना मैं, तो सवाल जो है या जो कॉन्वर्सेशन जो वो तो वही निकलेंगे। तो सही कहा मैंने उनसे?
4: बढ़िया, बिल्कुल ठीक।
3: ठीक है ना, तो ऐसा क्यों होता है कि हम सबको इंसानी तौर पर उन सब चीजों से जज किया जाता है जैसा हम बाहर दिखते हैं, ना केवल जैसा कि हम अंदर हैं?
4: दो कारण है, एक तो ये है कि कभी कभी इट कुड बी जस्ट क्लेनिनेस एंड हाइजीन, इट इज नॉट जस्ट ऑल अबाउट आप कैसे दिखते हैं, एक तो बेसिक एटिकेट्स भी होते हैं। दूसरा ये भी है कि हम बहुत समय से ये भूले हुए हैं कि मैं आत्मा और मेरा शरीर है।
3: जी,
4: हमें लगता है रोज शीशे में देखते देखते एक आदत से पड़ गया, मुझे लगता है ये जो शरीर दिखाई देता है यही मैं हूँ।
3: हाँ।
4: और यही अगर मेरी पहचान है तो मैं आपको भी उसी पहचान से देखता हूँ।
3: सो
4: इफ आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ विद दिस बॉडी एंड द फर्स्ट थिंग इज आई व्हेन आई लुक एट यू, और उसमें भी क्या होता है, जिसको जिस चीज से ज्यादा प्यार होता है, समझो बॉडी के अंदर भी किसी को अगर जूतों से बहुत प्यार है तो वो पहले दूसरे के शूज नोटिस करता है, किसी को ड्रेस से बहुत है तो वो देखता है उसने ब्रांडेड पहना है क्या पहना है,
3: घड़ी
4: है या कुछ भी है, तो जो भी चीज आप समझते हैं आपकी पहचान है वो आप ज्यादा उसके अंदर नोटिस करते हैं। तो इसलिए इस चीज की प्रैक्टिस करना कि हम ये बॉडी नहीं है, ये कॉस्ट्यूम है, सबका अलग अलग है, ये सब चोला है, कॉस्ट्यूम है, सबने धारण किया हुआ है, लेकिन इसको चलाने वाली, इन आंखों से देखने वाली, इन कानों से सुनने वाली, इस मुख से बोलने वाली, मैं आत्मा अलग हूँ।
3: क्या बात है,
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: पावर टू फेस होती क्या है, चलिए इस पर बात करते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: तो ये जो शक्ति है, ये सामना करने की शक्ति, पावर टू फेस जो है, ये कैसी शक्ति है, होती कैसे है, मतलब इसको बिल्ड कैसे करते हैं?
4: सारी शक्तियाँ जो है, जो हम भले बिन बिन शक्तियों की बात कर रहे हैं, ये देखो इसलिए कहते हैं शिव शक्ति
3: जी।
4: बिल्ड माना जितना आप योग करते हैं, मेडिटेशन के प्रैक्टिस करते हैं, ये शक्तियाँ आती हैं। लेकिन इट्स जस्ट लाइक आप मसल कैसे बिल्ड करते हैं,
3: उस पे एक्सरसाइज करके उसको रेपिटेशन देके। हाँ,
4: रेपिटेशन, द वर्ड इज रेपिटेशन। जैसे पहले तो जिम जाना है, तो पहले तो परमात्मा से कनेक्ट होना है। उसके बाद जिम जाने के बाद भी आपको वो चीज रिपीटेडली करनी पड़ेगी, तो ही तो वो मसल डेवलप होगी। ये भी ऐसे एक जैसे वो बॉडी के मसल है, ऐसे ये सोल के मसल है, ये स्ट्रेंथ है, इनर पावर है। तो आप कोई भी शक्ति को जब बार बार अपने जीवन में यूज करते हैं, तो वो शक्ति अपने आप बढ़ने लगती है, फिर वो नेचुरल हो जाती है।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

कैसे हो के जवाब में ठीक हूँ कह देने से कोई ठीक नहीं हो जाता। ठीक हूँ से मस्त हूँ कहने के लिए सुनिए मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला ओनली ऑन रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क इट्स हॉट

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में एंड वेलकम टू मिर्ची मॉर्निंग्स। यहाँ पे सुबह की नींद को हम जेंटली नहीं बल्कि फुल ऑन मिर्चीदार तरीके से भगाते हैं भाई, बॉलीवुड के मिर्चीदार बैंगर्स तुम्हारे लिए प्ले कर। चाहे तुम अभी ट्रैफिक में फंसे हुए हो या फिर सबवे पकड़ रहे हो या घर के लैपटॉप को खोलकर 5 मिनट के नाम पर अपने लाइफ के डिसीजन रिकंसिडर कर रहे हो, आई हैव गॉट यू फॉर नेक्स्ट फ्यू आवर्स। बिकॉज ऑनेस्टली यार, देसी मॉर्निंग्स का फॉर्मूला काफी सिंपल है। गर्मा गर्म चाय हो, गॉसिप उससे भी ज्यादा गर्म हो, और अलार्म को इग्नोर करने का टैलेंट तो हम बचपन से सीख कर आते हैं, जैसे कि हम अपनी मम्मा की डांट को इग्नोर करते हैं। आज का शो इज पैक्ड विद बॉलीवुड का मिर्चीदार बैंगर म्यूजिक, मस्ती, अ पिंच ऑफ नॉस्टैल्जिया और वो रैंडम देसी कॉन्वर्सेशंस जो कभी तुम अपने दोस्तों के साथ बैठकर किया करते थे। बस वॉल्यूम बढ़ा लो, स्माइल को चढ़ा लो और मिर्ची को अपने साथ बनाए रखो। और मुझे भी, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप भी कर सकते हो 9033 मिर्ची पर, दैट्स 9033647244। थोड़ी देर में बताऊंगी तुम्हें कॉन्टेस्ट के बारे में, तब तक के लिए तुम सुनो ये मिर्चीदार बैंगर्स। गुड मॉर्निंग टू यू, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Good morning, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, and it's time for this day that year only on Mirchi Mornings. सबसे पहले चलते हैं 1227 में मंगोल एम्पायर के फाउंडर जेंगिस खान पास्ड अवे. फास्ट फॉरवर्ड टू 1590, एक्सप्लोरर जॉन व्हाइट रिटर्न्स टू रोनोक आइलैंड एंड फाइंड्स द एंटायर इंग्लिश कॉलोनी डिजर्टेड. 116 लोग गायब हो गए थे. देन 1877 में एस्ट्रोनॉमर एसैप हॉल डिस्कवर्ड फोबोस, वन ऑफ मार्स मून्स. नाम थोड़ा विलन टाइप का है, लेकिन मार्स का छोटा सा कॉस्मिक कंपेनियन है ये. 1920, massive milestone. The US ratified the 19th Amendment, giving women the constitutional right to vote. ये हिस्ट्री में काफी बड़ा मोमेंट था. एंड फॉर अस देसीज, 1945 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस वाज रिपोर्टेड टू हैव डाइड फॉलोइंग एन अलेज्ड प्लेन क्रैश इन ताइहोकु, नाउ ताइपे. हिज लाइफ एंड डिसअपीयरेंस रिमेन्स वन ऑफ इंडियाज मोस्ट डिबेटेड हिस्टोरिकल स्टोरीज. एंड फाइनली 1958 में व्लादिमीर नाबोकोव्स कॉन्ट्रोवर्शियल नॉवल लोलिटा वॉज पब्लिश्ड इन द US. व्हाट्सएप का नंबर बताने से पहले तुम्हें ये बता दूं कि मिर्ची करेगा बंधन पूरा ये कॉन्टेस्ट चल रहा है. इसमें तुम्हें अपना फोन उठाना है, व्हाट्सएप करना है मुझे अभी के अभी. सबसे पहले टाइप करना है बंधन BANDHAN एंड साथ में भेजना है अपनी क्यूटेस्ट सिबलिंग मोमेंट्स के पिक्चर्स, और उसे भेज देना है 9033 मिर्ची पर. दैट्स 9033647244 पर. तो मुझे DM भी कर सकते हो इंस्टाग्राम और एक्स पर. मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिज, दैट इज MIRCHIPRIS. और उसके बाद वेट करना है मेरे कॉल का टू पार्टिसिपेट इन मिर्ची करेगा बंधन पूरा कॉन्टेस्ट ओनली ऑन मिर्ची. जल्दी जल्दी अपने पिक्चर्स भेजो फॉर राखी स्पेशल कॉन्टेस्ट ऑन मिर्ची. स्टे ट्यून एंड स्टे हॉट.

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची बनाने वाला है हिट गाना।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Good morning guys, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में and मिर्ची मॉर्निंग्स पर ये रहा तुम्हारा वेदर का हाल चाल. Right now we are sitting at 72 degrees Fahrenheit. Skies are partly cloudy, लेकिन फील हो रहा है 75 degrees Fahrenheit के आसपास. और सुबह 6 से 7 के बीच में तो हमने थोड़ी बहुत रेन भी देख ली है. 1 millimeter की बरसात और एक्सपेक्टेड है थ्रू आउट द डे. और अभी थोड़े बहुत बादल जो है वो सेटल इन हो रहे हैं, मतलब रेन ने अटेंडेंस लगा दी है. अब देखना है बरसेगा कब. आज का हाई will reach around 86 degrees Fahrenheit, but it could also feel like 90 degrees Fahrenheit. यानी कि humidity, sunlight और wind मिलकर थोड़ा सा warm कर रहे हैं आज के दिन को. Yesterday का high था 84 degrees Fahrenheit, so today it's just a little bit warmer. लेकिन कुछ ज़्यादा dramatic नहीं है. Overall expect a mix of clouds, some sunshine and a tiny chance of rain. तो बाहर निकलते time अपना umbrella carry करना बिल्कुल मत भूलना. साथ साथ में carry करो अपना water bottle. Keep yourself hydrated. अपना SPF 50 वाला सन प्रोटेक्शन लगाना बिल्कुल मत भूलना. और ऑफ कोर्स लेयर के प्लेयर बनकर बाहर निकलना, क्योंकि मौसम और तापमान दिन भर फ्लक्चुएट करने वाले हैं. और अभी आने वाले हैं मिर्ची दार बैंगर्स सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स. बट बिफोर वी गेट टू द बैंगर्स, लेट मी रिमाइंड यू, मिर्ची करेगा बंधन पूरा कॉन्टेस्ट में. अभी के अभी अपना व्हाट्सएप खोलो, उस पर लिखो बंधन और मुझे भेज दो अपनी क्यूटेस्ट सिबलिंग पिक्चर्स 9033 मिर्ची पर. दैट्स 9033647244 पर. यहाँ पे तुम मुझे DM कर सकते हो. मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम इंस्टाग्राम और एक्स पर. दैट इज MIRCHIPRIS. एंड देन वेट फॉर माय कॉल. राइट नाउ मिर्ची दार बैंगर्स का टाइम है. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Good morning, guys. मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में and it's time for Mirchi Hour का 3 only on Mirchi Mornings. सबसे पहले पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को इमीडिएटली ट्रांसफर करने का टू अ प्राइवेट हॉस्पिटल फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट आफ्टर नियरली 3 इयर्स इन प्रिजन. रिपोर्ट्स हैव साइटेड कंसर्न्स इंक्लूडिंग हाई ब्लड प्रेशर, heart palpitations and severe mental stress. There have also been allegations surrounding his treatment in custody. His health situation is developing, so we'll keep this one factual and respectful. Number 2 par India mein Delhi government ne class 9 students ke liye third language mandatory kar di hai. Aur catch ye hai ki jo students class 9 ka third language exam clear nahi karenge, they won't be allowed to appear for the class 10th board exams. Saath saath maths and science ke common and advanced लेवल भी इंट्रोड्यूस हो रहे हैं. एंड लास्टली बांग्लादेश के टेस्ट सीन में ऑस्ट्रेलिया ने सेकंड टेस्ट के लिए स्क्वाड अनाउंस कर दिया है और एक चेंज हुआ है. ओपनर जेक वेदरऑल्स को ड्रॉप करके मैट रेनशॉ को स्क्वाड में शामिल किया गया है. वेदरऑल्स फर्स्ट टेस्ट नॉट एग्जैक्टली अ ब्लॉकबस्टर, 23-0. मीनवाइल बांग्लादेश वन द फर्स्ट टेस्ट बाय 9 विकेट्स. एंड दैट्स इट फॉर मिर्ची आवर का 3 फॉर दिस आवर विद मी प्रिसिला. कनेक्ट करो मुझसे इंस्टा और एक्स पर. मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS. व्हाट्सएप आपका नंबर 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: Milci.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. Na wiedwala burka. Milci, burka.
2: Hello.
3: Could I speak to Manish, please?
2: Speaking.
3: मैं प्रोफेसर त्रिपाठी बोल रहा हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से. ओके मनीष, आई नीड योर फेवर. आपकी मदद की जरूरत पड़ गई थी. मैं यहाँ पे लेक्चर्स देता हूँ स्टूडेंट्स को. मैं यहाँ पे जो सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ मेरे स्टूडेंट्स को, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन. राइट, कि पहले इंसान एप था. आई बिलीव आपने भी पढ़ा होगा किसी जमाने में. यहाँ पहले इंसान बंदर की शक्ल में था, फिर वो धीरे धीरे धीरे धीरे यू नो एक इंसान बन गया. राइट,
2: बताएंगे आप कौन बोल रहे हैं?
3: मैं एक बार फिर बताता हूँ, मैं प्रोफेसर त्रिपाठी बोल रहा हूँ. मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन. राइट, एक मेरा सब्जेक्ट है जो मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ. 40-50 स्टूडेंट्स हैं मेरे. इफ यू डोंट माइंड, मैं प्लीज आपसे अगर चाहूँ आप मुझे 2 घंटे दे सकते हैं मेरी क्लास में आके.
2: 2 घंटे करना क्या है, मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा हूँ.
3: तो ये मेरा एक सब्जेक्ट है जो मैं स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ कि इंसान बंदर होता था. तो मेरे स्टूडेंट्स इस बात पे यकीन कर नहीं रहे. तो आप अगर क्लास में आ जाएंगे ना स्टूडेंट्स के सामने, तो स्टूडेंट्स को सामने मैं आपको खड़ा कर दूंगा और आपका चेहरा ब्लैकबोर्ड के पास आ जाएगा, तो उनको यकीन आ जाएगा कि हाँ पहले इंसान वाकई में बंदर. आई एम श्योर कि सारे यकीन कर जाएंगे कि हाँ पहले इंसान बंदर हुआ करता था. बस इतनी हेल्प चाहिए थी मुझे आपकी. तो कब आ जाएंगे आप मुझे ये बता दीजिए. कल का रख ले. मेरी बात मेरी

0: कोई बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मुझे माफ कर दो, थोड़ा ज्यादा हो गया था। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुझे नंबर दिया था तुम्हारी दोस्त कपिल ने, उसने कहा था कि तुम्हारा मुर्गा बना दे यार, मैं मुर्गा बनाया है, तुम रेडियो मिर्ची पे हो। आपकी इजाजत हो तो मैं हंस लूं यार। मनीष, वो एक्चुअली स्टूडेंट्स को यकीन नहीं आ रहा था कि आदमी पहले बंदर होता था, इसलिए मुझे लगा कि तुम आ जाओगे तो एक बार काम बन जाएगा यार। इंसान पहले बंदर होता था, अब मेरे को यकीन आ गया, मैं बता दूंगा उनको।
1: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट, मिर्ची फ्रेश माल।
2: लव लॉस और होप का म्यूजिकल सफर, वे जुनून।

0: गाने को गाया है सुबोध शर्मा ने, म्यूजिक दिया है मिथुन ने और लिरिक्स लिखे हैं सईद कादरी ने। फिल्म आवारा पंटू से सुनते रहिए बेजुनून, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
2: गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, और बॉलीवुड की एक खबर आ रही है मेरे पास जो मैं तुम्हें बता देती हूँ अभी। एक्टर विजय वर्मा वाज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड ऑन स्टेज बाय होस्ट डॉली सिंह, जिन्होंने उन्हें कहा नेशंस बिगेस्ट रेड फ्लैग। उफ, विजय

instead of running for the hills, hit back with buy a red cloth and make red flags. Dolly called that comeback lame. And Vijay basically said he was letting her terrible compliments slide. Now, I don't know about you, but this is exactly the kind of red flag conversation where nobody is actually waving a red flag. They are just throwing shade. और अब इस shade को थोड़ा सा उजाले में लाते हैं, यानी थोड़ा sparkle बबराते हैं यहाँ पर. Tanishq presents Festival of Diamonds. You can get up to 25% off on diamond value and making charges. दोनों ही Tanishq पर मिल रहा है. और इतना ही नहीं, अगर तुम्हें और चाहिए तो अपना पुराना gold लेकर जाओ जो कि 18 carat से above हो, उसे जाकर exchange कराओ at zero deduction. So maybe forget the red flags and go look for red carpets to wear those diamonds at. Of course, terms and conditions applied है. Tanishq का Festival of Diamonds चल रहा है और अभी चल रहा है Mirchi Mornings मेरे यानी कि Priscilla के साथ में. कनेक्ट करो मुझसे Insta और X पर. मेरा हैंडल है Mirchi Pris, that is MirchiPris. WhatsApp का नंबर 9033Mirchi, that's 9033647244. Stay tuned and stay hot.

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: ओला, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे थे मिर्ची मॉर्निंग्स एंड इट्स टाइम फॉर आवर बर्थडे बैश। यहाँ पर कैंडल्स कम बढ़ जाती है लेकिन सेलिब्रिटी के नाम कम नहीं बढ़ते हैं। सबसे पहले तो विश यू अ वेरी वेरी वेरी वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे, जो भी आज सेलिब्रेट करें, आज का दिन तुम्हारा है, सो एंजॉय इट टू द फुलेस्ट, ट्रीट योर सेल्फ एंड प्लीज जो कुछ भी करना चाहते हो, जो तुम्हारे मन को भाए वो सब कुछ करो। आज के दिन कैलोरीज भी काउंट नहीं करती, तो यू कैन हैव व्हाटएवर यू वांट। साइंस नहीं है, बस बर्थडे का इमोशन है, समझे। अब देखते हैं आज तुम्हारे साथ सेलिब्रेट कौन कर रहा है। हॉलीवुड लेजेंड्स, वी गॉट द लेट रॉबर्ट रेडफोर्ड एंड देन वी गॉट क्रिश्चियन स्लेटर, एडवर्ड नॉर्टन, एंडी सैमबर्ग हु इज वन ऑफ माय फेवरेट्स फ्रॉम ब्रुकलिन 99 एंड मालकम जमाल वॉर्नर, मैडलिन पेच फ्रॉम रिवरडेल एंड माया मिचेल फ्रॉम द फास्टर्स। म्यूजिक साइड पर बर्थडे वाइब्स जाती है लेजेंडरी इंडियन पोएट, लिरिसिस्ट एंड फिल्म मेकर गुलजार साहब को, भंगड़ा किंग दलेर मेहंदी साहब को एंड अमेरिकन रैपर एवरलास्ट को, एंड साथ में इंडी पॉप सॉन्ग राइटर एंड सिंगर क्लेरो। और अगर आज तुम्हारा हैप्पी वाला बर्थडे है तो सिर्फ मैसेज काफी नहीं है, बल्कि तुम्हारा बर्थडे बैश होना चाहिए, बिकॉज सी हाउ कूल द लिस्ट इज जो तुम्हारे साथ आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। तो खाओ पियो ऐश करो और मुझे अपने शाउट आउट भेज सकते हो। मिर्ची प्रेस इज माय हैंडल नेम, जहां पर तुम्हें कॉन्टेस्ट में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। मिर्ची करेगा बंधन, पूरा कॉन्टेस्ट चल रहा है मिर्ची पर, फटाफट से टाइप करो बंधन और उसके बाद अपने क्यूटेस्ट सिबलिंग मोमेंट्स के पिक्चर्स मुझे भेज दो, या तो इंस्टाग्राम पर मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम, दैट इज MIRCHIPRIS, या फिर व्हाट्सएप करो 9033 मिर्ची पर राइट अवे, दैट इज 9033647244। फटाफट से कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करो एंड वेट फॉर माय कॉल। एंड राइट नाउ मिर्ची, इधर गाने सुनने का टाइम है, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Hey there, this is Priscilla with you. So, Rhythm Mirchi Mornings, aur ab sunne wale ho gold car latest rate update.
2: Raj Jewels wishes everyone happy and healthy morning. Gold trading at $4,390. $4,390 per troy ounce gold ke price trade kar rahe hain. Silver also trending higher at $65. $65 per troy ounce aaj silver trade kar rahi hai. हालांकि गोल्ड $5,600 एंड सिल्वर $120 पर ट्राई आउंस की पीक टच कर चुके हैं और इस समय करेक्शन के साथ गोल्ड $4,390 एंड सिल्वर $65 पर ट्राई आउंस ट्रेड कर रहे हैं। दिवाली पुष्य नक्षत्र इससे पहले गोल्ड वापस अपवर्ड एग्रेसिव ट्रेंड ले आप गोल्ड में इन्वेस्ट करें rajjewels.com पे जहां पे 0% इंटरेस्ट पे जीरो फाइनेंसिंग जीरो डाउन पेमेंट के साथ आज गोल्ड का प्राइस लॉक करते हुए ज्वेलरी घर ले जा सकते हैं और 9 इंस्टॉलमेंट्स में पैसे दे सकते हैं rajjewels.com की टीम को। कैसे आइए लाइफ के प्रेशियस पल्स सेलिब्रेट करें एट rajjewels.com। थैंक यू
1: एंड देयर यू हैव इट लेटेस्ट गोल्ड रेट अपडेट एक्सक्लूसिवली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स विद मी प्रिसिला। कनेक्ट करो मुझसे इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस एंड व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

10 out of 10. क्यों नहीं चाहिए? चल ओके देन. भरे क्लब में रह जाएगी बिल्लो, फिर कल ले तू. कौन संभालेगा तुझको जब हो जाएगी टल्ली?

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला ओनली ऑन रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Escabala, buscabala, sacabala. Rabala. Burga, burga. La vieja la burga.
2: Mirchi, burga.
3: हेलो
4: आकाश
3: जी।
4: आकाश मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। आपने मुर्गा बनाने के लिए रिक्वेस्ट किया था ना?
3: हाँ, बिल्कुल।
4: मुझे बताइए किसका मुर्गा बनाना है?
3: मेरी गर्लफ्रेंड है।
4: ओहो, यही मिली है आपको?
3: जी, बहुत पंगे लेती है।
4: अच्छा आकाश, ये थोड़ी सी फॉर्मेलिटी है क्योंकि मुर्गा बनाने से पहले हम जो रिक्वेस्ट करते हैं मुर्गे की, उनसे एक फॉर्म फिल करा लेते हैं।
3: ठीक है,
4: मुझे अपना पूरा नाम बता दीजिए।
3: आकाश मल्होत्रा।

0: करेंगे तो ही हम मुर्गा बनाएंगे,
1: राइट? बिल्कुल बताइए।
0: चलिए, अच्छा इसमें ये है, मैं इसमें आपका नाम लिख देता हूँ, मैं आपको पढ़ देता हूँ। मैं आकाश मल्होत्रा अपने होशो आवाज में अपनी गर्लफ्रेंड
1: पूजा
0: का रेडियो मिर्ची पे मुर्गा बनवा रहा हूँ। अगर कल को पूजा को इस बात पे गुस्सा आ जाता है तो उसका जिम्मेदार आकाश यानी मैं खुद हूँगा, ठीक है? ओके। अगर गुस्सा इतना ज्यादा आ जाता है कि पूजा केस कर देती है मुर्गा बनाने वालों पे, तो उसका जिम्मेदार भी आकाश मल्होत्रा होगा।
1: अच्छा।
0: अगर केस पूजा जीत जाती है और सजा के तौर पे 10 साल की बिना बेल की सजा होती है, तो उसका जिम्मेदार आकाश मल्होत्रा होगा।
1: क्या कह रहे हैं?
0: अगर सजा के तौर पे सजाए काला पानी भेजा जाए तो आकाश मल्होत्रा जाएगा। ये दूसरा
1: सर, मतलब नहीं, मुर्गा बनाने में ऐसा सभी होता है?
0: नहीं नहीं, ये फॉर्मेलिटी है ना सर, ये पूरा करना होता है, ये कंपनी की तरफ से है। ये लास्ट सुन लीजिए, लास्ट में लिखा हुआ है, अगर मुर्गा बनवाने वाले ने शुरू की 2 शर्तें मान ली हैं, तो उसको मुर्गा बनवाना ही पड़ेगा जिसका वो चाहता है। तो मैं पूजा को फोन करता हूँ, आप मजे लीजिएगा, है ना
1: सर? देखिए,
0: हाँ बताइए।
1: हाँ, उसको सीधे गुस्सा आ गया और
0: अरे नहीं, बात तो सुनिए, गुस्सा आपको
1: आज तो प्लीज रहने दीजिए, इसको मेरी बात मान लीजिए, प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी।
0: चलिए मैं एक शर्त पे रहने दूंगा
1: जी,
0: अगर आप बोलेंगे मेरे साथ कुकड़ू। आकाश तुम रेडियो मिर्ची पे हो, मैं तुम्हें ऑन एयर डाल दिया है और तुम्हारा मुर्गा बन
1: मेरा बन गया वो कुकड़ू।
2: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में। लेट्स चेक व्हाट द स्टार्स हैव प्लान फॉर अस टुडे, ओनली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स।
2: मिर्ची राशि जोन।
1: It is, यानी कि मेष राशि, आज योर ब्रेन इज ऑन। इंटेलेक्चुअल एनर्जी से ऑब्स्टिकल्स को इजिली टैकल कर पाओगे और फाइनेंसेस में भी गुड न्यूज का चांस है आज। लकी कलर फॉर यू इज एमरल्ड ग्रीन, लकी नंबर इज 8। टॉरस यानी कि वृषभ राशि, वर्क को थोड़ा सा साइड में रखो एंड ब्रीद। सेल्फ केयर, गुड फूड एंड लाइफ्स लिटिल प्लेजर्स पे फोकस करो। स्प्रेडशीट बाद में भी खोल जाएगी और बाद में भी बन जाएगी, पक्का प्रॉमिस। लकी कलर फॉर यू इज लैवेंडर, लकी नंबर इज 6। जेमिनी यानी मिथुन राशि, आज इंपल्सिव डिसीजन से थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर रखो, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू योर वेल बीइंग। हर लेट्स जस्ट डू इट थॉट को फॉलो करना जरूरी नहीं मेरे दोस्त। लकी कलर इज स्काई ब्लू, लकी नंबर इज 3। कैंसर यानी कर्क राशि, एनर्जी फुल चार्ज है, बट छोटे छोटे वर्क प्रॉब्लम्स को पर्सनली मत लिया करो यार। बॉस को ईमेल भेजना तुम्हारी डेस्टिनी नहीं है। लकी कलर फॉर यू इज कोरल, लकी नंबर इज 2। लियो यानी कि सिंह राशि, फाइनली सम ब्रीदिंग रूम, रीसेंट टेंशन और डेली स्ट्रेस से रिलीफ मिलेगा। टेक दैट विन लियो, बिना विक्ट्री स्पीच दिए। लकी कलर फॉर यू इज गोल्ड, लकी नंबर इज 9। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वर्गो यानी कन्या राशि, इवनिंग में सोशल प्लान्स आर लुकिंग गुड। बस फूड एंड ड्रिंक्स में मॉडरेशन रखो। एक प्लेट चाट के बाद आई हैव नो रिग्रेट्स बोलना अलाउड है, लेकिन 10 प्लेट चाट के बाद थोड़ा रिकंसिडर करना पड़ेगा। लकी कलर इज मिंट, लकी नंबर इज 5। एंड दैट वाज राशि जोन पार्ट 1। अभी आएगा राशि जोन पार्ट 2, लेकिन उसके पहले आएंगे मिर्चीदार बैंगर्स और उसके पहले जाएंगे आप मुझे फॉलो करने मिर्ची प्रिस, मेरा हैंडल नेम है इंस्टाग्राम और एक्स पर। फटाफट से जाओ मुझे फॉलो करो, ड्रॉप मी अ हाय। मैं हूं प्रिसिला तुम्हारे साथ में, सुन रहे तो मिर्ची मॉर्निंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Welcome back to Rashi Zone Part 2. मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में और अब हम बातें करने वाले हैं लीब्रा से लेकर पाइसीस तक.
2: मिर्ची राशि जोन.
1: लीब्रा यानी कि तुला राशि, आज ओल्ड टेंशन को रिलीज करने का परफेक्ट टाइम है. रीसेट करो, प्रायोरिटीज रियलाइन करो और जो चीज पीस नहीं देती है उसे थोड़ा सा डिस्टेंस पे रखो प्लीज. लकी कलर फॉर यू इज पीच, लकी नंबर इज 7. स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, आज सुपर हीरो बनने की जरूरत ही नहीं है. अपनी लिमिट्स पुश मत करो. इंटेंशनल रेस्ट इज योर सुपर पावर टुडे. बेड इज नॉट योर एनिमी स्कॉर्पियो. लकी नंबर इज 4 and lucky color is burgundy. Sagittarius yani ki dhanu rashi, pace steady rakho and overcome it mat karo please. Har invitation, har favor and har plan ka answer yes hona compulsory nahi hota hai, kabhi kabhi no bolna bhi chahiye. Lucky color for you is turquoise, lucky number is number 1. Capricorn yani makar rashi, health conscious choices are your star's favorite today, especially caffeine and stimulants thode cut back karo. Matlab ki third coffee se pehle maybe ek glass pani try kar lo. Lucky color for you is olive, lucky number is 10. Aquarius yani ki kumbh rashi, creativity is your happy place today. Art, music, writing, cooking, jo kuch bhi hai which makes your brain go ooh interesting, go for it. Fresh perspective bhi milega. Lucky color is electric blue, lucky number is 11. And last but not the least, Pisces yani ki mean rashi, romance is in the air. Compassionate communication se close relationships aur strong ho sakte hain. Dil ki baat bolo yaar, bas apne chat ko khol kar indicator ko 45 minutes tak stare mat karo. Lucky color for you is rose pink, lucky number is 12. And that wraps up Rashi Zone Part 2 only on Mirchi Morning with me Priscilla. बने रहो मेरे साथ on social media as well. X and Instagram पर मेरा handle है Mirchi Pris, that is MIRCHIPRIS. WhatsApp का number 9033 Mirchi, that's 9033647244. Stay tuned and stay hot.

0: फ्रेश माल।
1: इमरान हाशमी के सॉन्ग्स और प्लेलिस्ट हिट्स दोनों का रिश्ता पुराना है। उनकी अगली म्यूजिकल ऑफरिंग है ये आवारापन।

0: इस गाने को आवाज दी है अरिजीत सिंह ने, म्यूजिक दिया है अमाल मलिक ने और लिरिक्स लिखे हैं रश्मि विराग ने। आवारापन 2 से सुनते रहिए ये आवारापन, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
2: ऑलराइट, मिर्ची मॉर्निंग्स पर मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, और अब दी एंड का टाइम आ चुका है, यानी कि यहाँ पर कर्टन रोल हो रहा है, क्रेडिट्स रोल हो रहे हैं, यहाँ पर से रैप अप पैक अप सब का टाइम आ चुका है। लेकिन जाने से पहले तुम्हें याद दिला दूं कि मिर्ची पर चल रहा है कि अमेजिंग कॉन्टेस्ट, यानी कि अमेजिंग कॉन्टेस्ट, वो भी राखी के उपलक्ष्य में। फटाफट से अपना फोन उठाओ, व्हाट्सएप निकालो और टाइप करो बंधन, उसके बाद अपना पूरा नाम टाइप करो और साथ साथ में भेजो मुझे अपने क्यूटेस्ट राखी मोमेंट्स, सिबलिंग मोमेंट्स, कोई अच्छे से पिक्चर्स जो तुम्हारे भाई बहन के साथ है वो भेज सकते हो तुम 9033 मिर्ची पर। That's 9033647244। और भेजकर करना क्या है, वेट करना है तुम्हें मेरे कॉल का जो कि जल्दी आएगा, और उसके बाद तुम पार्टिसिपेट कर पाओगे मिर्ची करेगा बंधन पूरा कॉन्टेस्ट में। एंड यू नो व्हाट द गुड न्यूज इज कि तुम मुझे इंस्टाग्राम पर भी डीएम कर सकते हो, मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिज, दैट इज MIRCHIPRIS। फटाफट से अपनी एंट्रीज भेजो ताकि तुम राखी के पहले कुछ जीत सको अपने भाई या बहन के लिए। अभी के लिए फिलहाल टाटा बाय बाय है, मिलूंगी तुम्हें कल। छोड़कर जा रही हूँ तुम्हारे लिए कुछ मिर्चीदार बैंगर्स। मेरा नाम है प्रिसिला एंड ऑफ कोर्स सुन रहे थे तुम मिर्ची मॉर्निंग्स। सुनते रहो ना यार, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

ये दोनों एक्टर्स ना ऑलरेडी साउथ में बहुत बड़े स्टार्स थे, लेकिन उन्हें लगता था कि शायद हिंदी इंडस्ट्री में वो इतना बड़ा मार्क नहीं बना पाएंगे। पुरानी जीन्स में हेलो हेलो वेलकम, दिस इज मी श्रेया। और आज मैं जिस फिल्म की बात कर रही हूँ ना, वो फिल्म मैं एक्चुअली मैं देखना पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि उस फिल्म को देखने के बाद ना, वो कहते हैं हैंगओवर होता है, एक्चुअली मैं इस फिल्म को देखने के बाद ना मेरा मूड ऑफ होता है। तो जब भी ये फिल्म बहुत सारे यू नो चैनल्स पे आती रहती है, आई ट्राई नॉट टू वॉच दिस मास्टरपीस, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट सदमा। कमल हसन और श्रीदेवी जी ऑलरेडी साउथ के बहुत बड़े एक्टर्स थे, लेकिन हिंदी फिल्म में दोनों ने एक साथ पहली बार इसी फिल्म से काम किया था। आज इसी फिल्म की बातें होंगी श्रेया के साथ, एंड ऑफकोर्स सदमा के बहुत खूबसूरत गाने। तो बस कहीं भी मत जाना, कम बैक राइट हियर ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची
2: इसका बाना उसका बाना सबका बाना मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: हेलो, ये स्वर्गीय अनिल चौहान के यहाँ से बोल रहे हैं भाई साहब?
3: किसके यहाँ से?
4: स्वर्गीय अनिल चौहान।
3: मतलब किसके यहाँ बात फोन मिलाया आपने?
4: स्वर्गीय अनिल के यहाँ फोन मिलाया भाई साहब। मैं बोल रहा हूँ
3: अनिल ही बोल रहा हूँ, स्वर्गीय नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ।
4: सर स्वर्गीय अनिल चौहान उनका पूरा नाम है सर, मैं से बोल रहा हूँ पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट से। तो ये स्वर्गीय अनिल चौहान के यहाँ से कोई हो तो उनसे बात करा दीजिए।
3: दिमाग खराब है तेरा? अबे मैं खुद बोल रहा हूँ, तू सोच कम से कम।
4: सर आप ये बेवकूफी की बात ना करें, आप एक तो जुबान संभाल की बात करें। मैं पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ, आप कह रहे हैं आप जिंदा हैं, यहाँ पोस्टमार्टम कर रखा है हमने, आपकी रिपोर्ट आ गई है सर, आके ले जाइए पोस्टमार्टम की रिपोर्ट।
3: स्वर्गीय नहीं, तू अनिल चौहान से ही बात कर रहा है।
4: स्वर्गीय अनिल चौहान यार, आप जो लक्ष्मी नगर में रहते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ।
3: खराब हो गया आपका कि स्वर्गीय अनिल चौहान, मैं जिंदा हूँ भाई, मैं रहा है घर परिवार वाले में, तेरे कोई पागल तो नहीं हो गया?
4: कौन पागल हो गया आपकी पोस्टमार्टम? मेरी बात सुन लीजिए आप।
3: नहीं
4: मैंने मारा पोस्टमार्टम हमने किया, स्वर्गीय अनिल चौहान से बात करनी है, उनसे बात कराई। बीच में आप कैसे आ गए यार, कमाल कर दिया आपने। दिमाग खराब मेरा नहीं हुआ, आपको यकीन नहीं है तो दोबारा आके पोस्टमार्टम करा लो, एक ही रिपोर्ट है दोनों की।
3: डॉक्टर बोल रहा हूँ,
4: मैं डॉक्टर विजय बोल रहा हूँ यार, मैंने खुद पोस्टमार्टम किया उनका।
3: केस करूंगा,
4: केस हम क्या करेंगे, केस तो मैं उन पे करूंगा, स्वर्गीय अनिल चौहान पे, क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पे लिखा हुआ आप बाप बनने वाले थे, वो बाप बनने वाले।
3: परिवार वाले आदमी से ही बात करता है, कौन है तेरी
4: बेवकूफी की बात मत करिए। आप आइए यहाँ पे पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट में, दिखाता हूँ आपकी लाश, आपकी बॉडी दिखाता हूँ यहाँ पे आके। पोस्टमार्टम तो करके छोड़ूंगा मैं
3: जी।
4: स्वर्गीय अनिल चौहान जी के यहाँ से कोई बात कर सकते मेरे से? मेरी बात सुनिए, आप फोन मत काटिएगा, बड़ा मुश्किल से मिलता है। अनिल चौहान जी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपका मुर्गा बनाया, छोटा सा मजाक किया है, आपकी उम्र बहुत लंबी है यार, आप टेंशन ना लें।
3: अरे किसी बहुत मार खाओगे आप, सही बता रहे हैं।
4: सर मैं पिटने को तैयार हूँ, लेकिन आपकी हंसी सुन के मुझे मजा आता है, अब मेरे साथ आप प्यार से कह दीजिए।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

गुलशन ग्रोवर तो फिल्म की सिर्फ शूटिंग देखने गए थे, उन्हें क्या पता था कि उन्हें इस फिल्म का इतना इम्पोर्टेंट रोल भी मिल जाएगा। पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ, और आज बात हो रही है फिल्म सदमा की। एक ऐसी फिल्म जिसका क्लाइमैक्स देखने के बाद मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक ऐसी फिल्म जिसको मैं ना अगर किसी भी चैनल पे आ रही होती है मैं देख नहीं पाती हूँ। मतलब मुझे पता होता है कि इसका क्लाइमैक्स देख करके ना मेरा मूड एटलीस्ट फॉर अ कपल ऑफ डेज खराब रहेगा। हाँ जी, सो सदमा में गुलशन ग्रोवर विलन का रोल करते हैं, लेकिन एक्चुअली में उनको कभी इस रोल के लिए अप्रोच नहीं किया गया था। ये तो बाय एक्सीडेंट था कि उनको ये रोल मिल गया। अब हुआ ये कि अनिल कपूर ऑलरेडी एक कन्नड़ मूवी के लिए शूटिंग कर रहे होते हैं और सदमा की शूटिंग ना वहीं कहीं उनके ही सेट के आसपास होती है, तो अनिल कपूर श्रीदेवी से मिलने चले गए थे वहां पर। जब वहां गए तो भाई फिल्म के जो कैमरामैन थे जिनका नाम था बालू महेंद्र, उन्होंने गुलशन ग्रोवर को देख करके अनिल कपूर से कहा कि अपने दोस्त से पूछो क्या वो इस फिल्म में विलेन का रोल करेगा। और सोचिए, अनिल कपूर ने जैसे ही पूछा, गुलशन ग्रोवर तो उस समय उनके पास खास काम नहीं था, उन्होंने झट से हाँ कह दी, एंड दैट वॉज हाउ ही लैंडेड इन द रोल। पुरानी जीन्स पे सदमा के गाने होंगे और सदमा की बातें विद मी श्रेया। कम बैक राइट हियर।

0: सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: तेरा क्या होगा कालिया?
3: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
2: अब मिर्ची खा।
4: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

यही फिल्म कमल हसन और श्रीदेवी जी ने पहले तमिल में की थी। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ। सो ओरिजिनली दिस फिल्म वाज मेड इन तमिल, उसके बाद इसको हिंदी वर्जन में बनाया गया, टेकिंग अगेन द सेम एक्टर्स श्रीदेवी एंड कमल हसन। वेल आई एम टॉकिंग अबाउट द फिल्म सदमा। लेकिन आपको पता है, हिंदी वर्जन बनाते समय श्रीदेवी काफी नाराज थी, और वो भी खुद से। उनको लगा कि तमिल वर्जन में ना वो और कमल हसन बहुत सारे सीन्स को इम्प्रूव कर पा रहे थे बिकॉज दे अंडरस्टूड द लैंग्वेज, लेकिन हिंदी क्योंकि श्रीदेवी की मदर टंग नहीं थी, उनको बहुत ज़्यादा नहीं समझ में आ रही थी, तो श्रीदेवी सेट के हम बहुत सारे सीन्स को ना इम्प्रोवाइज नहीं कर पाए, जैसे डायरेक्टर बोलते गए हम बस वही करते गए। लेकिन अगर जैसा डायरेक्टर ने कहा सिर्फ उतना किया तो भी क्या खूबसूरत किया। सदमा रिमेन्स वन ऑफ माई फेवरेट फिल्म्स ऑफ श्रीदेवी जी। मतलब इस फिल्म के बाद ना, अगर आप जब ये फिल्म देख लोगे तो आपको लगेगा कि श्रीदेवी कितनी मंझी हुई कलाकार थी। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया, इस फिल्म की बातें और गाने चलते रहेंगे। सो डोंट यू गो एनीवेयर, कम बैक राइट हियर।

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

द डर्टी पिक्चर विद्या बालन की याद है आपको, ये किस पे बनी थी? साउथ की सेंसेशनल एक्ट्रेस विद्या बालन पे। अब ये साउथ की एक्ट्रेस यानी सिल्क स्मिता उस टाइम पे एक्सट्रीमली पॉपुलर थी और क्राउड भर भर के जाता था सिनेमा हॉल में इनकी फिल्में देखने के लिए। तो भाई जब हिंदी फिल्म बना रहे थे डायरेक्टर बालू महेंद्र, तो उनको लगा कि उन्हें अब सिल्क स्मिता को ना हिंदी फिल्मों वालों से भी इंट्रोड्यूस कराना चाहिए, हिंदी फिल्म ऑडियंस को भी दिखाना चाहिए। तो ही वांटेड टू शो समथिंग सेंसेशनल बिटवीन द यू नो स्टोरी ऑफ कमल हासन एंड श्रीदेवी जी। सो उन्होंने ना साउथ की इंडस्ट्री की ये फैसिनेटिंग यंग गर्ल सिल्क स्मिता को लेकर के आए। सो इनका तमिल वर्जन वाली जो फिल्म थी उसमें तो बहुत ही अच्छा काम किया, और उसके बाद हिंदी फिल्म में जब वो लेकर के आए, दैट वाज हर इंट्रोडक्शन, सिल्क स्मिता का इंट्रोडक्शन टू हिंदी ऑडियंस। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया, सदमा की बातें चलती रहेंगी, वापस सब।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे,
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

0: Radio Mitri, New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
1: Purani Jeans. Mirchi Shreya ke saath. Only on Mirchi. It's hot.
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: बाल कपड़ों वाली मेम साहब।
1: कौन? मैं?
0: जी हाँ, आप ही से कह रहा हूँ। यहाँ आएंगे आप? क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम सुनीता।
0: लवली नेम।
1: थैंक यू।
0: गाएंगे आप मेरे साथ?
1: ना, डर लगता है।
0: डरने की क्या बात है, मैं आपके साथ गाता हूँ।
1: अच्छा।

अगर ये दोनों हमारे साथ गा सकते हैं तो आप सब क्यों नहीं गा सकते? रेडी रेडी रेडी रेडी यस 1 2 3 4 ला ला ला ला ला ला ला बस बस बस बस बस बस बहुत हो गया बहुत हो गया बहुत हो गया. म्यूजिशियंस आप लोग मत बजाइए. रेडी 1 2 3 4

इस फिल्म से एज म्यूजिक कंपोजर अपनी शुरुआत की थी इलैयाराजा जी ने, और इसी फिल्म से अपना डेब्यू इलैयाराजा के असिस्टेंट बन करके पता है किसने किया था? डी ए आर रहमान। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द फिल्म सदमा, यानी श्रीदेवी जी और कमल हासन की फिल्म। इसी फिल्म से ये दोनों द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स म्यूजिक कंपोजर्स हमें मिले थे। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया, इस फिल्म की बातें और गाने बहुत सारे आज लेकर के आई हूँ, तो बस कहीं भी मत जाना।

0: प्लीज।
1: स्पीकिंग,
0: मैं प्रोफेसर त्रिपाठी बोल रहा हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से। ओके मनीष, आई नीड योर फेवर, आपकी मदद की जरूरत पड़ गई थी। मैं यहाँ पे लेक्चर्स देता हूँ स्टूडेंट्स को, मैं यहाँ पे जो सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ मेरे स्टूडेंट्स को, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन, राइट, कि पहले इंसान एप था, आई बिलीव आपने भी पढ़ा होगा किसी जमाने में, यहाँ पहले इंसान बंदर की शक्ल में था, फिर वो धीरे धीरे धीरे धीरे यू नो एक इंसान बन गया, राइट।
1: बताएंगे आप कौन बोल रहे हैं?
0: मैं एक बार फिर बताता हूँ, मैं प्रोफेसर त्रिपाठी बोल रहा हूँ, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन, राइट। एक मेरा सब्जेक्ट है जो मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, 40-50 स्टूडेंट्स हैं मेरे। इफ यू डोंट माइंड, मैं प्लीज आपसे अगर चाहूँ आप मुझे 2 घंटे दे सकते हैं मेरी क्लास में आके?
1: 2 घंटे करना क्या है, अभी भी नहीं समझ पा रहा हूं,
0: वही, मतलब... तो ये मेरा एक सब्जेक्ट है जो मैं स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ कि इंसान बंदर होता था, तो मेरे स्टूडेंट्स इस बात पे यकीन कर नहीं रहे। तो आप अगर क्लास में आ जाएंगे ना स्टूडेंट्स के सामने, तो स्टूडेंट्स को सामने मैं आपको खड़ा कर दूंगा और आपका चेहरा ब्लैकबोर्ड के पास आ जाएगा, तो उनको यकीन आ जाएगा कि हाँ पहले इंसान वाकई में बंदर। आई एम श्योर के सारे यकीन कर जाएंगे कि हाँ पहले इंसान बंदर हुआ करता था। बस इतनी हेल्प चाहिए थी मुझे आपकी। तो कब आ जाएंगे आप मुझे ये बता दीजिए, कल का रख ले। मेरी बात सुनो, आई एम प्रोफेसर, मेरी बात सुनिए यार। आप हेलो, वैसे दिल्ली कितनी गालियां खाऊं मैं आपको हंसाने के लिए यार, ये नाइंसाफी है।
1: हेलो,
0: मैं प्रोफेसर त्रिपाठी, मेरी बात सुनिए, मुझे माफ कर दो, थोड़ा ज्यादा हो गया था। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे नंबर दिया था तुम्हारी दोस्त कपिल ने, उसने कहा था कि तुम्हारा मुर्गा बना दे यार, मैं मुर्गा बनाया है, तुम रेडियो मिर्ची पे हो, आपकी इजाजत हो तो मैं हंस लूं यार। मनीष, वो एक्चुअली स्टूडेंट्स को यकीन नहीं आ रहा था कि आदमी पहले बंदर होता था, इसलिए मैंने जो लगा कि तुम आ जाओगे तो एक बार काम बन जाएगा यार। इंसान पहले बंदर होता था, अब मेरे को यकीन आ गया, मैं बता दूंगा उनको।
2: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।

पुरानी जीन्स पे आप खुश रिया के साथ, और जब बात हो फिल्म सदमा की तो ना एक जगह चुप हो जाना चाहिए क्योंकि गाना ये आ रहा है। एंड इस गाने से यानी इस फिल्म के गानों से इलिया राजा जी ने अपना डेब्यू किया था, और उनके असिस्टेंट पता है कौन थे, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, इट वाज नन अदर देन एआर रहमान साहब। इतना खूबसूरत गाना ये सुदास जी ने गाया। कमिंग अवर राइट नेक्स्ट सुरमई अखियों, ये गाना जो है श्रीदेवी को देख करके कमल हसन गाते हैं, और श्रीदेवी के चेहरे पर इतना इनोसेंस, तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, ये गाना शुरुआत से इन्जॉय करो। मैं हूँ श्रेया, Only on Mirchi.

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
1: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।

0: बालू महेंद्र ने जब इस फिल्म का क्लाइमैक्स लिखा था तो उन्होंने बहुत सिंपल सा लिखा था कि कमल हासन श्रीदेवी को बस देख रहे हैं, ऐसी आंखों से देख रहे हैं, ऐसे इमोशंस के साथ देख रहे हैं कि बस अब तो मत जाना। आई एम टॉकिंग अबाउट द फिल्म सदमा, जिसका क्लाइमैक्स ओ गॉड रोंगटे खड़े कर देता है। और इसीलिए ना, जब भी ये फिल्म आती है किसी भी चैनल पे तो मैं देख नहीं पाती हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि इसका क्लाइमैक्स ना मुझे 2-3 दिन तक मेरे दिल में एकदम जगह करके रहेगा, एंड यू नो आई विल फील वेरी वेरी सैड। सो बालू महेंद्र ने तो कोशिश की थी कि बस कमल हासन सिर्फ एक ग्लिम्स दे रहे हैं श्रीदेवी को, उनकी आंखों में है कि तुम मुझे छोड़ के कभी मत जाओ, और श्रीदेवी चलती जा रही है। लेकिन इट वॉज कमल हासन सेड कि नहीं, ऑडियंसेस के लिए ये सिर्फ एक ग्लिम्स, एक एक्सप्रेशन नहीं होना चाहिए, इसमें कुछ और होना चाहिए। एंड दैट वॉज द टाइम व्हेन कमल हासन सेड कि मैं इस रोल, इस पूरे सीन को ना इम्प्रोवाइज करना चाहता हूँ। तो जो वो ट्रेन में बैठी हैं श्रीदेवी और कमल हासन उनको उछल उछल के दिखा रहे हैं कि ये शैतानियाँ हम लोग करते थे, ये मस्ती हम लोग करते थे, और श्रीदेवी उनको यू नो कुछ खाने को देती हैं कि अरे भाई लगता है यू नो ही इज़ लॉस्ट हिज माइंड, इसको कुछ खाने को दे दें, ये सब कमल हासन ने सोचा था। और ये ऐसा सीन निकला जिसकी वजह से ये फिल्म आज तक जानी जाती है। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया, सदमा की बातें चलती रहेंगी, बस कहीं भी मत जाना।
1: ये माना मेरी जान।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

फिर से वो टाइम आ गया जब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, बिकॉज अगला गाना इज़ अ कल्ट सॉन्ग। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ सदमा की बात हो रही है, तो वो गाना ना हो जो जब भी हम थोड़ा सा डगमगाते हैं या ज़िंदगी से नाराज़ होते हैं, निराश होते हैं, तो ये गाना सबसे पहले जहन में आता है। सुरेश वाडकर की आवाज़ है, इलिया राजा की कॉम्पोजिशन है और गुलजार साहब ने लिखा था ये। यही गाना तमिल में, यानी जब ये फिल्म तमिल में बनी थी ओरिजिनली, तो ये तमिल की फिल्म थी जिसको हिंदी में फिर से बनाया गया था। यही गाना था पुंगात्रु पुथी नाथू, कुछ ऐसे करके, मैं ठीक से शायद प्रोनाउंस नहीं कर पाऊंगी। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट ये वाला, ए जिंदगी गले लगा ले। कौन लिख सकता था ये गुलजार साहब के अलावा, कि हमने भी तेरे हर गम को गले से लगाया। कमिंग अप राइट नेक्स्ट, मैं हूं श्रेया ऑन पुरानी जीन्स।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

ಚತುರ ನಾರ ಅಮ ಜೋರೆ ಗಣಜಿ.

0: ka gaya.
1: श्रीदेवी की सारी फिल्मों में से सबसे बेहतरीन मानी जाती है सदमा फॉर हर एक्टिंग स्किल्स। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ, और जैसे दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम, वैसे ही रोल रोल पे लिखा होता है एक्टर का नाम। एक्चुअली मैं रोल पहले करने वाली थी डिंपल कपाटिया, बट एट दैट टाइम उनके पास ना बल्क में डेट्स नहीं थी इस फिल्म को देने के लिए। दो शी वॉन्टेड टू डू द फिल्म बिकॉज उनको स्क्रिप्ट बहुत पसंद आई थी, तो उनको ना उस समय सागर के लिए रोप इन किया हुआ था सिप्पी साहब ने, एंड शी कुड नॉट गिव डेट्स फॉर दिस फिल्म। एंड देन केम श्रीदेवी जी, जिन्होंने इस रोल को चार चांद लगा दिए। मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं ये फिल्म ना अगर किसी भी चैनल पे आ रही होती है ना, आई अवॉइड सीइंग दिस फिल्म, क्योंकि सदमा ना आपको एक सदमा दे के जाती है। इसका क्लाइमैक्स आपके साथ रहता है फॉर अ कपल ऑफ डेज। यू कीप थिंकिंग अबाउट द फिल्म, यू कीप थिंकिंग अबाउट कमल हसन, यू कीप थिंकिंग अबाउट श्रीदेवी जी। पुरानी जीन्स पे इसी फिल्म की बातें, मैं हूँ श्रेया।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची
2: इसका बाना उसका बाना सबका बाना मुर्गा मुर्गा नफीद वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: आकाश
3: जी,
4: आकाश मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। आपने मुर्गा बनाने के लिए रिक्वेस्ट किया था ना?
3: हाँ, बिल्कुल।
4: मुझे बताइए किसका मुर्गा बनाना है?
3: मेरी गर्लफ्रेंड है।
4: ओहो, यही मिली है आपको?
3: जी, बहुत पंगे लेती है।
4: अच्छा आकाश, ये थोड़ी सी फॉर्मेलिटी है क्योंकि मुर्गा बनाने से पहले हम जो रिक्वेस्ट करते हैं मुर्गे की, उनसे एक फॉर्म फिल करा लेते हैं।
3: ठीक है,
4: मुझे अपना पूरा नाम बता दीजिए।
3: आकाश मल्होत्रा।
4: अच्छा आकाश, मैं थोड़ा सा इसको फॉर्म को पढ़ देता हूँ क्योंकि मुर्गा थोड़ा सा मुश्किल भी होता है बनाना, कभी गुस्सा आ जाता है लोगों को, यू नो। तो इसमें कुछ क्लॉज और रूल्स हैं, वो आप फॉलो करेंगे, इसको अग्री करेंगे तो ही हम मुर्गा बनाएंगे,
3: राइट?
4: चलिए। अच्छा इसमें ये है, मैं इसमें आपका नाम लिख देता हूँ, मैं आपको पढ़ देता हूँ। मैं आकाश मल्होत्रा अपने होशो आवाज में अपनी गर्लफ्रेंड पूजा का रेडियो मिर्ची पे मुर्गा बनवा रहा हूँ। अगर कल को पूजा को इस बात पे गुस्सा आ जाता है तो उसका जिम्मेदार आकाश यानी मैं खुद हूँगा, ठीक है?
3: जी, डेफिनेटली।
4: ओके, अगर गुस्सा इतना ज्यादा आ जाता है कि पूजा केस कर देती है मुर्गा बनाने वालों पे, तो उसका जिम्मेदार भी आकाश मल्होत्रा होगा।
3: अच्छा,
4: अगर केस पूजा जीत जाती है और सजा के तौर पे 10 साल की बिना बेल की सजा होती है, तो उसका जिम्मेदार आकाश मल्होत्रा होगा।
3: क्या कह रहे हैं?
4: अगर सजा के तौर पे सजाए काला पानी भेजा जाए तो आकाश मल्होत्रा जाएगा। ये दूसरा
3: सर, मतलब नहीं, मुर्गा बनाने में ऐसा सभी होता है?
4: नहीं, ये फॉर्मेलिटी है ना सर, ये पूरा करना होता है, ये कंपनी की तरफ से है। ये लास्ट सुन लीजिए, लास्ट में लिखा हुआ है, अगर मुर्गा बनवाने वाले ने शुरू की 2 शर्तें मान ली है तो उसको मुर्गा बनवाना ही पड़ेगा जिसका वो चाहता है। तो मैं पूजा को फोन करता हूँ, आप मजे लीजिएगा, है ना?
3: सर देखिए, बात तो सुनिए।
4: हाँ बताइए।
3: फन की बात अलग है, लेकिन उसको सीरियसली गुस्सा आ गया। और
4: अरे नहीं, बात तो सुनिए, गुस्सा आपको आज,
3: मैं तो प्लीज रहने दीजिए इस चीज को, मेरी बात मान लीजिए, प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी।
4: चलिए मैं एक शर्त पे रहने दूंगा
3: जी,
4: अगर आप बोलेंगे मेरे साथ कुकड़ों को। आकाश तुम रेडियो मिर्ची पे हो, मैं तुम्हें ऑन एयर डाल दिया है और तुम्हारा मुर्गा बन गया।
3: मेरा बन गया वो कुकड़ों को।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

इट्स ऑल्सो से कि ये ना ये रीमेक नाम की कोई चीज ही नहीं थी इसमें. इसमें एज इट इज फ्रेम टू फ्रेम काम कराया था. और इसमें भाई तमिल वर्जन में भी ऑफकोर्स श्रीदेवी और कमल हसन थे, लेकिन हिंदी में किसी हिंदी फिल्म के लिए दोनों एक साथ पहली बार काम कर रहे थे, एंड दैट वॉज सदमा. पुरानी जीन्स पे इसी फिल्म की बातें आज श्रेया के साथ होती रहेंगी. इनकेस आपको मुझे सदमा के बारे में कुछ बताना है, आई एम श्योर अगर आप रेट्रो फैन हैं आपने ये फिल्म देखी होगी, तो डू शेयर योर फीलिंग्स फेसबुक और इंस्टा पे. माय हैंडल इज आरजे श्रेया विद लव, दैट्स आरजे SHREYA विद लव.

तमिल में जब ये फिल्म रिलीज हुई थी इसका नाम था मुंद्रम पिराई और लोगों का कहना है कि फ्रेम टू फ्रेम सेम फिल्म उठा करके रखी गई इन हिंदी। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ, मैं बात कर रही हूँ फिल्म सदमा की, जो सबसे पहले तमिल में बनी उसके बाद इसको हिंदी में बनाया गया। सो अ लॉट ऑफ पीपल से अ लॉट ऑफ

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में। अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।
3: हिट गाना।

only on Radio Mercy New York. It's hot. आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

मूवी के मेकर्स का ऐसा सोचना था कि सदमा फिल्म इतनी चलेगी नहीं। पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ इस फिल्म ने तमिल वर्जन में तो बहुत कमाल किया था, लेकिन जब इसको हिंदी में बनाया जा रहा था ना, तो सबके डाउट्स थे। डाउट्स इसलिए थे क्योंकि उस टाइम पे 1980s में एक तरफ बच्चन साहब की एक्शन फिल्में आ रही थी, दूसरी तरफ काका की रोमांटिक फिल्में आ रही थी, उसके बीच में इतनी इमोशनल फिल्म जिसका इतना डिप्रेसिव एंड हो, सो द मेकर्स थॉट कि भाई फिल्म बॉक्स ऑफिस पे कमाल नहीं करेगी, व्हिच एक्चुअली हैपेंड। भाई बॉक्स ऑफिस पे बहुत ज़्यादा क्राउड उस समय नहीं आया, लेकिन हाँ, इस फिल्म ने कल्ट का स्टेटस लिया। एंड स्पेशली आज के दौर में दिस फिल्म इज अ माइलस्टोन दैट एक्चुअली श्रीदेवी जी एंड कमल हसन अचीव्ड। पुरानी जीन्स पे मैं हूं श्रेया, सदमा की बातें चलती रहेंगी, कहीं भी मत जाना।

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ जाने का टाइम, यानी गड्डी में बैठो और हवा बहुत अच्छी चल रही है। आज हाईवे पे जाने से पहले गाड़ी के शीशे नीचे करेंगे। Alright, आज का मेरा हाईवे हेट मैं उन दीवानों को डेडिकेट करना चाहती हूँ जो अपने आप को सबसे बड़ा दीवाना मानते हैं अपने प्यार के लिए और कहते हैं
1: मुझसा नहीं
0: इस अंबर के नीचे। अगर आप ऐसे दीवाने हैं तो ये गाना आज आपको सेलिब्रेट करते हुए। रफी साहब की आवाज, मैं हूँ श्रेया, जाने का टाइम हो गया। विल सी यू टुमारो। इन केस मुझसे कुछ कहना है तो फेसबुक और इंस्टा पे RJ श्रेया विद लव, ये है मेरा हैंडल। गुड नाइट।

0: यार ये सिर्फ मेरी ही नहीं, दुनिया में कई लड़कियों की इंस्पिरेशन है।
1: श्रुति, श्रुति, श्रुति,
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: प्यार से इनको देसी गर्ल भी बोलते हैं। नाम है इनका प्रियंका चोपड़ा जोनस। और भाई इस बंदी की जितनी तारीफ करूं उतनी कम लगती है मुझे, क्योंकि द काइंड ऑफ फिल्मोग्राफी, द काइंड ऑफ करियर ग्राफ जो इस बंदी ने अपने लिए बनाया है इज स्टुपेंडस एंड समथिंग टू लर्न फ्रॉम। कहां छोटे शहर से आई ये बंदी, आज इंटरनेशनल मार्केट में एक बहुत बड़ा नाम है। एंड टैलेंट की बात तो भाई क्या ही करें, कूट कूट के भरा हुआ है। इनफैक्ट रीसेंट अपडेट इज कि प्रियंका चोपड़ा जोनस जो हैं वो एकेडमी अवार्ड विनर एक्टर रसल क्रो के ऑपोजिट एक साईफाई एक्शन थ्रिलर में नजर आएंगे जिसका नाम है ब्लू फ्लाई। इनफैक्ट प्रियंका चोपड़ा के पर्सनल ओपिनियंस जो है ना जिंदगी को लेके, दैट इज समथिंग जिसके लिए मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूं यार, अ ट्रू फेमिनिस्ट एट हार्ट। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Isca bana, pusca bana, saca bana.
2: Rabana.
1: Burga, burga. La fiesta la burga.
2: Mirchi, burga.
3: Hello.
4: Could I speak to Manish, please?
3: Speaking.
4: मैं प्रोफेसर त्रिपाठी बोल रहा हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से. ओके मनीष, आई नीड योर फेवर. आपकी मदद की जरूरत पड़ गई थी. मैं यहाँ पे लेक्चर्स देता हूँ स्टूडेंट्स को. मैं यहाँ पे जो सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ मेरे स्टूडेंट्स को, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन. राइट, कि पहले इंसान एप था. आई बिलीव आपने भी पढ़ा होगा किसी जमाने में. यहाँ पहले इंसान बंदर की शक्ल में था, फिर वो धीरे धीरे धीरे धीरे यू नो एक इंसान बन गया. राइट,
3: बताएंगे आप कौन बोल रहे हैं?
4: मैं एक बार फिर बताता हूँ, मैं प्रोफेसर त्रिपाठी बोल रहा हूँ. मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन. राइट, एक मेरा सब्जेक्ट है जो मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ. 40-50 स्टूडेंट्स हैं मेरे. इफ यू डोंट माइंड, मैं प्लीज आपसे अगर चाहूँ आप मुझे 2 घंटे दे सकते हैं मेरी क्लास में आके.
3: 2 घंटे करना क्या है, मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा हूँ. मतलब
4: तो ये मेरा एक सब्जेक्ट है जो मैं स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ कि इंसान बंदर होता था. तो मेरे स्टूडेंट्स इस बात पे यकीन कर नहीं रहे. तो आप अगर क्लास में आ जाएंगे ना स्टूडेंट्स के सामने, तो स्टूडेंट्स को सामने मैं आपको खड़ा कर दूंगा और आपका चेहरा ब्लैकबोर्ड के पास आ जाएगा, तो उनको यकीन आ जाएगा कि हाँ पहले इंसान वाकई में बंदर. आई एम श्योर कि सारे यकीन कर जाएंगे कि हाँ पहले इंसान बंदर हुआ करता था. बस इतनी हेल्प चाहिए थी मुझे आपकी. तो कब आ जाएंगे आप मुझे ये बता दीजिए. कल का रख ले. मेरी बात सुनो. आई एम प्रोफेसर. मेरी बात सुनिए यार. आप हेलो. वैसे दिल्ली कितनी गालियां खाऊं मैं आपको हंसाने के लिए यार, ये नाइंसाफी है.
3: हेलो,
4: मैं प्रोफेसर त्रिपाठी. मेरी बात सुनिए. मुझे माफ कर दो, थोड़ा सा ज्यादा हो गया था. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मुझे नंबर दिया था तुम्हारी दोस्त कपिल ने. उसने कहा था कि तुम्हारा मुर्गा बना दे यार. मैं मुर्गा बनाया है, तुम रेडियो मिर्ची पे हो. आपकी इजाजत हो तो मैं हंस लूं यार. मनीष, वो एक्चुअली स्टूडेंट्स को यकीन नहीं आ रहा था कि आदमी पहले बंदर होता था, इसलिए मैंने जो लगा कि तुम आ जाओगे तो एक बार काम बन जाएगा यार. इंसान पहले बंदर होता था, अब मेरे को यकीन आ गया, मैं बता दूंगा उनको.
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स

ब्रेड पकौड़े की कसम रणबीर कपूर को रणवीर सिंह की तरफ से मैं थैंक्स बोल देती हूँ यार। अगर ब्रेड पकौड़े की कसम से आप ये नहीं समझ पाए कि मैं फिल्म बैंड बाजा बारात की बात करने वाली हूँ बाबू मोशराय, तो क्या खाक फिल्मी है आप? जरा इंटेक अपना बढ़ाइए मेरे शो का, देखिएगा फिर दिन दोगुनी रात चौगुनी किस तरीके से फिल्मी आपा आपके अंदर घुसता है। बट यस, टॉकिंग अबाउट दिस फिल्म जो रिलीज हुई थी साल 2010 में, जिसको डायरेक्ट किया था मनीष शर्मा ने और जिस फिल्म के साथ रणवीर सिंह ने अपना हिंदी फिल्म इंडस्ट्री डेब्यू किया था, उसके लिए मैं रणबीर कपूर को थैंक्स बोलना चाहती हूँ, क्योंकि ये फिल्म सबसे पहले रणबीर कपूर को ऑफर की गई थी, बट ही डिडंट वांट टू प्ले बिट्टू। लेकिन बाद में जब ये फिल्म इतना अच्छा परफॉर्म कर गई ना, तो रणबीर कपूर को रिग्रेट हो रहा था अपनी उस डिसीजन पे। बट कोई नहीं, उनकी वजह से रणवीर सिंह को इतना अल्टीमेट लेवल का डेब्यू का मौका मिल पाया यार। बाकी अगर आपने नोटिस नहीं किया होगा तो लेट मी टेल यू, फिल्म में रेडियो मिर्ची का जिक्र भी है, और सिर्फ जिक्र नहीं, बेसिकली जब बिट्टू और श्रुति के बीच में वो कांड हो जाता है ना, और बिट्टू श्रुति को लास्ट टाइम उसके घर ड्रॉप कर रहा होता है, तो ही इज लिसनिंग टू रेडियो मिर्ची, एंड स्पेसिफिकली हमारे आरजे नवेद बोल रहे होते हैं उनके कानों में। पता था आपको? चलो कोई नहीं, मैंने बता दिया ना। मिर्ची पे मैं हूं श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: खेलो मगर प्यार से।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: अरे अरे मैं तो मिर्ची फिल्म से गेम खेलने की बात कर रही हूँ। सो द ड्रिल इज कि आपको इस गेम को खेलने के लिए पहले मेरे इंस्टाग्राम पे जाके DMs में अपना नंबर भेजना होता है और फिर मैं आपको कॉल करके इन सवालों के सिलसिले की शुरुआत करती हूँ। तो आज हमारे साथ सबसे पहले टेलीफोन लाइन पे है दीपक जी। कैसे है सर?
3: बढ़िया, नमस्कार जी।
0: तो सर एक बार फिर से आपके अंदर के फिल्मी कीड़े को जगाया जाए। तो मेरा पहला सवाल है, अनिल कपूर की फिल्म जिसमें वो घड़ी पहन के गायब हो जाते हैं,
3: मिस्टर इंडिया,
0: मिस्टर इंडिया में मोगैम्बो कौन है?
3: अमरीश पुरी।
0: अमरीश पुरी की फिल्म जिसमें उनके पास टॉमी नाम का एक पग होता है,
3: टॉमी नाम का पग, ये मुझसे शादी करोगी।
0: बहुत बढ़िया, मुझसे शादी करोगी में विकेट सनी कौन है?
3: अक्षय कुमार।
0: अक्षय कुमार की फिल्म जिसमें वो करोड़ों की बंदूकें भंगार में बेच देते हैं,
3: ये फिर हेरा फेरी।
0: फिर हेरा फेरी में गोरिल्ला से केला छीन के कौन खाता है?
3: जॉनी लिवर।
0: जॉनी लिवर का कैरेक्टर किस फिल्म में भूला भूलते हैं?
3: तो गोलमाल थ्री।
0: गोलमाल थ्री में गोपाल कौन है?
3: अजय देवगन।
0: अजय देवगन की फिल्म जिसमें लंगड़ा त्यागी उनके गैंग मेंबर होते हैं?
3: ओमकारा।
0: ओमकारा में लंगड़ा त्यागी कौन है?
3: सैफ अली खान।
0: सैफ अली खान की फिल्म जिसमें परी होती है?
3: परी होती है मतलब परिणीति चोपड़ा?
0: नहीं नहीं, परी परी लेजिट परी।
3: नहीं पता।
0: चलिए कोई बात नहीं, उसका जवाब तो आगे वाले प्लेयर हमें दे देंगे, बट अभी मैं आपको ये टैग जरूर देना चाहूंगी।
1: मिर्ची फिल्मची।
0: तो बाबू मोशाय, अगर आपके अंदर का फिल्मची भी थोड़ा फोमो में जा रहा है, देन यू नो द ड्रिल। मिर्ची श्रुति के इंस्टा पे अपना नंबर DM कीजिए एंड वील कनेक्ट टुगेदर। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: खेलो मगर प्यार से।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: नाटी नाटी मैं तो मिर्ची फिल्म से गेम खेलने की बात कर रही हूँ यार, जिसकी शुरुआत आज हमने दीपक जी के साथ की। सो बेसिकली आपको ना मेरे इंस्टाग्राम मिर्ची श्रुति पे जाके अपना नंबर डीएम करना होता है, फिर मैं आपको कॉल करती हूँ। तो आज जैसा कि मैंने कहा, दीपक जी ने शुरू किया था बट ही गॉट स्टक एट अ पॉइंट, और उसके आगे का गेम कंटिन्यू करने के लिए मेरे साथ सत्यम जी है। Are you ready, sir?
3: Okay, I'm ready. Let's try. Let's go for it.
0: All right. So, Saif Ali Khan की फिल्म जिसमें परी होती है।
3: थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक।
0: क्या बात है, थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक में परी कौन है?
3: रानी मुखर्जी।
0: रानी मुखर्जी की फिल्म जिसमें हीरो एक दिन का सीएम बनता है।
3: नायक।
0: नायक में टीवी एंकर कौन है?
3: अनिल कपूर, सॉरी।
0: अनिल कपूर किस फिल्म में घोड़े पे गधे की पेंटिंग बनाते हैं?
3: अरे वो वेलकम।
0: वेलकम में मजनू भाई की बहन कौन है?
3: मजनू भाई की बहन कटरीना कैफ।
0: कटरीना कैफ किस फिल्म में पॉलिटिशियन बनी है?
3: राजनीति।
0: यस, राजनीति में उनको किससे प्यार होता है?
3: उसको, रणबीर कपूर।
0: रणबीर कपूर की फिल्म जिसमें वो संजय दत्त बने हैं?
3: संजू।
0: संजू में रणबीर कपूर के बेस्ट फ्रेंड कौन है?
3: कटरीना का हस्बैंड।
0: नाम तो बता दो सर।
3: अरे वो कौशल। विकी कौशल।
0: यस, विकी कौशल की फिल्म जिसमें उनकी वाइफ को घर जाना है?
3: राजी
0: में अंडरकवर रॉ एजेंट कौन है?
3: अंडरकवर वो खुदी थी, आलिया भट्ट।
0: यस, आलिया भट्ट की फिल्म जिसमें वो बिहार से आई हुई हॉकी प्लेयर बनती हैं?
3: उड़ता पंजाब
0: में टॉमी सिंह कौन है?
3: शाहिद कपूर
0: किस फिल्म में एंगर इश्यूज वाले ऑर्थोपेडिक सर्जन है?
3: कबीर सिंह
0: में प्रीति कौन है?
3: कियारा आडवाणी
0: की फिल्म जिसमें सरोगेसी और स्पर्म मिक्स हो जाते हैं?
3: गुड न्यूज
0: में दूसरी हीरोइन कौन है?
3: करीना कपूर खान।
0: करीना कपूर की फिल्म जिसमें वो एक आत्मा बनी है?
3: अरे वो तलाश।
0: क्या बात है, इसी के साथ हमारी भी तलाश कंप्लीट हुई फॉर आवर सेकंड मिर्ची फिल्म ची।
1: मिर्ची फिल्म ची।
0: तो अगर आपको फोमो हो रहा है देन वरी नॉट माय फ्रेंड, आपको बस मिर्ची श्रुति के डीएम में जाके अपना नंबर भेजना है एंड रेस्ट आई विल टेक केयर ऑफ। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirci.
1: Iskabana, puskabana, sakabana. Yabana. Burka, burka. La virtua la burka. Mirci, burka.
2: हेलो
3: आकाश
2: जी।
3: आकाश मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। आपने मुर्गा बनाने के लिए रिक्वेस्ट किया था ना?
2: हाँ, बिल्कुल।
3: मुझे बताइए किसका मुर्गा बनाना है?
2: मेरी गर्लफ्रेंड है।
3: ओहो, यही मिली है आपको?
2: जी, बहुत पंगे लेती है।
3: अच्छा आकाश, ये थोड़ी सी फॉर्मेलिटी है क्योंकि मुर्गा बनाने से पहले हम जो रिक्वेस्ट करते हैं मुर्गे की, उनसे एक फॉर्म फिल करा लेते हैं।
2: ठीक है,
3: मुझे अपना पूरा नाम बता दीजिए।
2: आकाश मल्होत्रा।
3: अच्छा आकाश, मैं थोड़ा सा इसको फॉर्म को पढ़ देता हूँ क्योंकि मुर्गा थोड़ा सा मुश्किल भी होता है बनाना, कभी गुस्सा आ जाता है लोगों को, यू नो। तो इसमें कुछ क्लॉज और रूल्स हैं, वो आप फॉलो करेंगे, इसको अग्री करेंगे तो ही हम मुर्गा बनाएंगे।
2: राइट, बिल्कुल।
3: चलिए, अच्छा इसमें ये है, मैं इसमें आपका नाम लिख देता हूँ, मैं आपको पढ़ देता हूँ। मैं आकाश मल्होत्रा अपने होशो आवाज में अपनी गर्लफ्रेंड पूजा का रेडियो मिर्ची पे मुर्गा बनवा रहा हूँ। अगर कल को पूजा को इस बात पे गुस्सा आ जाता है तो उसका जिम्मेदार आकाश यानी मैं खुद हूँगा। ठीक है
2: जी, डेफिनेटली।
3: ओके, अगर गुस्सा इतना ज्यादा आ जाता है कि पूजा केस कर देती है मुर्गा बनाने वालों पे, तो उसका जिम्मेदार भी आकाश मल्होत्रा होगा।
2: अच्छा,
3: अगर केस पूजा जीत जाती है और सजा के तौर पे 10 साल की बिना बेल की सजा होती है, तो उसका जिम्मेदार आकाश मल्होत्रा होगा।
2: क्या कह रहे हैं?
3: अगर सजा के तौर पे सजाए काला पानी भेजा जाए तो आकाश मल्होत्रा जाएगा। ये दूसरा
2: क्या सर, मतलब नहीं, मुर्गा बनाने में ऐसा सब भी होता है?
3: नहीं, ये फॉर्मेलिटी है ना सर, ये पूरा करना होता है, ये कंपनी की तरफ से है। ये लास्ट सुन लीजिए, लास्ट में लिखा हुआ है, अगर मुर्गा बनवाने वाले ने शुरू की 2 शर्तें मान ली है तो उसको मुर्गा बनवाना ही पड़ेगा जिसका वो चाहता है। तो मैं पूजा को फोन करता हूँ, अब आप मजे लीजिएगा, है ना?
2: सर मेरी बात तो सुनिए।
3: हाँ बताइए।
2: फन की बात अलग है, लेकिन उसको सीरियसली गुस्सा आ गया। और
3: अरे नई बात तो सुनिए, गुस्सा आपको
2: आज मैं तो प्लीज रहने दीजिए, इसको मेरी बात मान लीजिए, प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी।
3: चलिए मैं एक शर्त पे रहने दूंगा
2: जी,
3: अगर आप बोलेंगे मेरे साथ कुकड़ू। आकाश तुम रेडियो मिर्ची पे हो, मैं तुम्हें ऑन एयर डाल दिया है और तुम्हारे मुर्गा बन गया।
2: मेरा बन गया वो कुकड़ों को।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
1: इट पटक।
5: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
4: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची। इट्स हॉट।

0: कसम से मजा चार गुना हो जाता है।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ,
0: आप अपने गंदे दिमाग को इधर उधर मत ले जाओ। मैं कंटेंट देखने के बाद मजा चार गुना होने की बात कर रही हूँ यार, स्पेशली वो कंटेंट जिसमें स्ट्रांग फीमेल कैरेक्टर्स होते हैं। एंड थैंकफुली हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का परसोना थोड़ा चेंज हो रहा है, आउटलुक चेंज हो रहा है, एंड दे आर इंट्रोड्यूसिंग स्ट्रांग फीमेल कैरेक्टर्स अपने फिल्मों में भी एंड ओटीटी रिलीजेज में भी। वेल, आज पांच का पंच की लिस्ट के थ्रू मैं कुछ ऐसे ही स्ट्रांग फीमेल कैरेक्टर्स, स्पेसिफिकली वेब सीरीज की बात कर रही हूँ जिन्होंने स्ट्रांग फीमेल कैरेक्टर्स से हमें इंट्रोड्यूस कराया। इन द लिस्ट सबसे पहले वी टॉक्ड अबाउट दिल्ली क्राइम, नंबर दो पे लेट्स टॉक अबाउट शी। वेल, ये एक क्राइम ड्रामा सीरीज है, क्रिएटेड एंड रिटन बाय इम्तियाज अली एंड दिव्या जौहरी, बाकी इसे डायरेक्ट किया है आरिफ अली और अविनाश दास ने। एंड ये एक कहानी है ऑफ अ फीमेल कांस्टेबल हु गोज अंडर कवर टू बस्ट एन अंडरवर्ल्ड गैंग, एंड दिस स्ट्रांग फीमेल कैरेक्टर एक्चुअली ब्रेक्स ऑल द जेंडर बायसेस इन दिस सीरीज। देख के जो मजा आएगा क्या ही बताऊं मैं आपको। एंड नॉट फॉरगेट टू मेंशन, चेरी ऑन द केक इज विजय वर्मा इन दिस सीरीज। मूविंग ऑन, नंबर तीन पे अरण्यक की बात करते हैं, डायरेक्टेड बाय विनय वाइकुल। ये एक क्राइम थ्रिलर सीरीज है जिसमें रवीना टंडन लीड रोल में नजर आई। वेल, सेट इन द फिक्शनल टाउन ऑफ सिरोहना जो हिमाचल प्रदेश में है, रवीना टंडन एक कॉप का किरदार निभा रही है जिसका नाम है कस्तूरी डोगरा, एंड शी हरसेल्फ इज बैटलिंग विद हर ओन फैमिली इश्यूज, बट साथ ही वो अपनी टीम के साथ मिलकर हिमाचल में हुए एक फॉरेन टीनेज गर्ल के एलिजेड रेप और मर्डर केस को सुलझाती हैं। सो येस, आई वुड से दैट अगेन, दैट किसी भी सीरीज या फिल्म में एक स्ट्रांग फीमेल कैरेक्टर को देख के मजा चार गुना हो जाता है। वेल, अगर आप भी मेरी इस लिस्ट में कोई सीरीज या फिर फिल्म ऐड करना चाहो, देन फील फ्री टू डू दैट MIRCHISHRUTI, दैट इज मिर्ची श्रुति के नाम से। मैं फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे मिलूंगी। इन द मीन टाइम, एन्जॉय द सॉन्ग्स राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: इंटरेस्ट लेवल 200% हो जाता है।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: जब भी किसी फिल्म में या फिर किसी OTT सीरीज में एक स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर देखने को मिलता है, वेल आई एम श्योर यू वुड कनेक्ट विद दिस फीलिंग ऑफ माइन। वेल इसीलिए आज पांच का पंच की लिस्ट के थ्रू मैं कुछ ऐसी नेटफ्लिक्स सीरीज की बात कर रही हूँ जिन्होंने अमेजिंग स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स हमें दिए हैं। वेल इन द लिस्ट नंबर 4 पे लेट्स टॉक अबाउट बॉम्बे बेगम्स, डायरेक्टेड बाय अलंकृता श्रीवास्तव, बोनीला चैटर्जी एंड इति अग्रवाल। ये ड्रामा वेब सीरीज पूजा भट्ट का कमबैक भी थी। वेल इट एक्सप्लोर्स द लाइव्स ऑफ 5 एम्बिशियस वुमेन जो अपने लाइफ के ड्रीम्स और डिजायर्स के बीच सोसाइटी से भी लड़ रही हैं, एट द सेम टाइम वो अपनी जिंदगी को एक अलग लेवल पे एक्सप्लोर भी कर रही हैं। इन शॉर्ट इट इज अ सीरीज दैट अ मॉडर्न डे वुमन वुड डेफिनेटली रेजोनेट विद। मूविंग ऑन नंबर 5 पे लेट्स टॉक अबाउट माई येट अनदर थ्रिलर सीरीज ऑन नेटफ्लिक्स जो एक स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर हमारे बीच लेकर आती है। वेल माई इज डायरेक्टेड बाय अंशाई लाल एंड अतुल मोंगिया जिसमें साक्षी तन्वर लीड रोल में नजर आ रही हैं। वेल द सीरीज फॉलोज द स्टोरी ऑफ अ ग्रीविंग मदर जिसकी बेटी की ट्रेजिक मौत हो जाती है। मोर ओवर शी डिस्कवर्स द क्रिमिनल्स बिहाइंड द डॉटर्स डेथ एंड टर्न्स मर्सीलेस टू फाइंड द रियल कॉज। इन शॉर्ट ये कैरेक्टर दैट इज शील चौधरी प्लेड बाय साक्षी तन्वर इज अ कैरेक्टर दैट शोज द ट्रू पावर ऑफ अ मदर। सो यस, अगर आप भी मेरी इस लिस्ट में कोई स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर ऐड करना चाहो देन फील फ्री टू डू दैट। MIRCHISHRUTI दैट इज मिर्ची श्रुति के नाम से मैं फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे मिलूंगी। इन द मीन टाइम एंजॉय द सॉन्ग्स राइट हियर ऑन मिर्ची विद दिस लड़की बड़ी फिल्मी इट्स हॉट।

0: कालिया
1: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
0: अब
2: मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: यार इससे अच्छा तो हम टेलीपैथी टेलीपैथी खेल लेते।
1: ये वर्ल्ड है ना वर्ल्ड, इसमें दो तरह के लोग होते हैं।
0: मिर्ची पे ट्यून्ड हूँ आप, मैं हूँ आपके साथ श्रुति, और इस दुनिया में पाए जाने वाले दो तरीके के मैसेज भेजने वालों की चर्चा हो रही है। फर्स्ट आर द पीपल जो वर्ड्स में बातचीत करते हैं मैसेजेस के थ्रू, मतलब ये टाइप करना पसंद करते हैं, इमोजीज उतना इनके मैसेजेस में चैट्स में आपको नजर नहीं आएगा, और किसी दिन इनको लिखने लिखने का मन नहीं हुआ तो ऑफ कोर्स वॉइस नोट इज द गो टू थिंग। लेकिन जो दूसरी कैटेगरी है, आय हाय हाय, भगवान ने बड़े फुर्सत में बनाया है इनको, क्योंकि इनको ना वर्ड्स ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर ये पता ही नहीं है, शायद ये भूल चुके हैं, क्योंकि इनकी कॉन्वर्सेशन होती है सिर्फ और सिर्फ इमोजीज के जरिए। और अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि अरे ये तो हमारे जेंजी है, ना मुन्ना ना, जेंजी इज वे ओवर इमोजी, वो जिप्स में बात करते हैं, वो अब्रिविएशंस में बात करते हैं, इफ यू नो यू नो। बाकी आप इन दोनों में से किस कैटेगरी में हो बताने के लिए मिर्ची श्रुति के नाम से फेसबुक या इंस्टा पे कनेक्ट कर सकते हो। टिल देन स्टे ट्यून्ड, इट्स ऑल।

दोस्तों मंडे का तो अपना स्टारडम होता है और फ्राइडे की अपनी अलग फैन फॉलोइंग। शाम शादा लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्दी। लेकिन हमारा जो मंगलवार है वो बॉलीवुड फिल्म के उस सीन की तरह होता है जहाँ कहानी क्वाइटली आगे बढ़ रही होती है। हीरो भी आ चुका होता है, हीरोइन से मुलाकात हो चुकी होती है, विलन का भी हिंट मिल ही गया होता है और ऑडियंस बस ये देखना चाहती है कि अब आगे क्या होगा। बिल्कुल हमारे वीक की तरह मंडे की एंट्री तो हो गई, अब पिक्चर अपनी रिदम पकड़ चुकी है और वैसे भी ये जो हफ्ता है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, तो एक्साइटमेंट का बैकग्राउंड म्यूजिक ऑलरेडी बज रहा है। तो चलिए इस ट्यूजडे की स्टोरी को थोड़ा फिल्मी बनाते हैं, मूड हल्का रखते हैं, ट्रैफिक को थोड़ा बैकग्राउंड आर्टिस्ट बना देते हैं और बॉलीवुड का वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। और मुझे बताइए दोस्तों, अगर आपके इस हफ्ते का जॉनर चूज करना हो तो वो बॉलीवुड का कौन सा जॉनर होगा? रोमांस, कॉमेडी, थ्रिलर या फुल ऑन फैमिली ड्रामा? टेल मी ऑन इंस्टा RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और चलिए इस ट्यूसडे यानी मंगलवार की फिल्म का अगला सीन शुरू करते हैं इस जबरदस्त बॉलीवुड गाने के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. La vieva la burka. Mirchi, burka.
2: Hello.
3: Hello, ये स्वर्गीय अनिल चौहान के यहाँ से बोल रहे हैं भाई साहब?
2: किसके यहाँ से?
3: स्वर्गीय अनिल चौहान.
2: मतलब किसके यहाँ बात फोन मिलाया आपने?
3: स्वर्गीय अनिल के यहाँ फोन मिलाया भाई साहब. मैं बोल रहा हूँ
2: अनिल ही बोल रहा हूँ. स्वर्गीय नहीं हूँ मैं, जिंदा हूँ.
3: सर स्वर्गीय अनिल चौहान उनका पूरा नाम है सर. मैं से बोल रहा हूँ पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट से. तो ये स्वर्गीय अनिल चौहान के यहाँ से कोई हो तो उनसे बात करा दीजिए.
2: दिमाग खराब है तेरा? अब मैं खुद बोल रहा हूँ तू सोच कम से कम.
3: सर आप ये बेवकूफी की बात ना करें. आप एक तो जुबान संभाल की बात करें. मैं पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ. आप कह रहे हैं आप जिंदा हैं, यहाँ पोस्टमार्टम कर रखा है हमने. आपकी रिपोर्ट आ गई है सर. आके ले जाइए पोस्टमार्टम की रिपोर्ट.
2: स्वर्गीय नहीं तू अनिल चौहान से ही बात कर रहा है.
3: स्वर्गीय अनिल चौहान यार आप जो लक्ष्मी नगर में रहते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ.
2: खराब हो गया आपका कि स्वर्गीय अनिल चौहान मैं जिंदा हूँ भाई. बैठा है घर परिवार वाले में तेरे कोई पागल तो नहीं हो गया?
3: कौन पागल हो गया आपकी पोस्टमार्टम? मेरी बात सुन लीजिए आप. मैंने मारा पोस्टमार्टम हमने किया. स्वर्गीय अनिल चौहान से बात करनी है, उनसे बात कराई. बीच में आप कैसे आ गए यार? कमाल कर दिया आपने. दिमाग खराब मेरा नहीं हुआ, आपको यकीन नहीं है तो दोबारा आके पोस्टमार्टम करा लो. एक ही रिपोर्ट है दोनों की.
2: डॉक्टर बोल रहा हूँ.
3: मैं डॉक्टर विजय बोल रहा हूँ यार. मैंने खुद पोस्टमार्टम किया उनका.
2: ऐसा केस
3: आप क्या करेंगे? केस तो मैं उन पर करूंगा, स्वर्गीय अनिल चौहान पे, क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पे लिखा हुआ आप बाप बनने वाले थे. वो बाप बनने वाले
2: परिवार वाले आदमी से बात करता है कौन?
3: बेवकूफी की बात मत करिए आप. आइए यहाँ पे पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट में, दिखाता हूँ आपकी लाश, आपकी बॉडी दिखाता हूँ यहाँ पे आके. पोस्टमार्टम तो करके छोड़ूंगा मैं.
2: जी
3: स्वर्गीय अनिल चौहान जी के यहाँ से कोई बात कर सकते हैं मेरे से?
2: मेरी बात सुनिए सर,
4: आप फोन मत काटिएगा, बड़ा मुश्किल से मिलता है. अनिल चौहान जी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और आप रेडियो मिर्ची पे हैं. आपका मुर्गा बनाया है, छोटा सा मजाक किया है. आपकी उम्र बहुत लंबी है यार, आप टेंशन ना लें.
2: अरे किसी बहुत मार खाओगे आप, सही बता रहे हैं.
4: सर मैं पिटने को तैयार हूँ, लेकिन आपकी हंसी सुन के मुझे मजा आता है. अब मेरे साथ आप प्यार से कह दीजिए.
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट. मिर्ची फ्रेश माल.
6: एक्सप्लोसिव वाइब और पावर पैक्ड एनर्जी का डोज.

0: इस गाने को गाया है और कंपोज किया है विशाल मिश्रा ने और लिरिक्स लिखे हैं राजशेखर ने। फिल्म टॉक्सिक से सुनते रहिए तबाही, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: कभी किसी ट्रेलर को पॉज करके दोबारा देखा है? शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और पहले ना ट्रेलर से फिल्म आ रही है यही बताता था, लेकिन अब ट्रेलर डिटेक्टिव गेम बन चुका है। मतलब पहले एक फ्रेम देखो, फिर कमेंट्स पढ़ो, और फिर पता चलता है कि लोगों ने उस एक सेकेंड में ना पूरी थियोरी बना दी है। जी हाँ, कि यार यही कैरेक्टर विलन होगा, इस सीन का कनेक्शन पहली वाली फिल्म के साथ था। मुझे तो लगता है बॉलीवुड फैन से अच्छे इन्वेस्टिगेटर्स दुनिया में ही मिल ही नहीं सकते, क्योंकि कभी कभी ट्रेलर से ज्यादा एंटरटेनिंग तो यार उसके कमेंट्स होते हैं। तो दोस्तों, क्या आपने भी वो कमेंट्स पढ़े हैं तो मुझे जरूर बताना कि सबसे इंटरेस्टिंग कमेंट क्या थे। वैसे आप ट्रेलर देखते हुए किस चीज पर सबसे पहले ध्यान देते हो? क्या वो म्यूजिक होता है, डायलॉग होता है, एक्शन होता है, या फिर माई फेवरेट कॉमेंट सेक्शन? डीएम ऑन इंस्टा RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और अब ट्रेलर नहीं, सीधा फुल एंटरटेनमेंट। अगला बॉलीवुड गाना ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। It feels so-

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

बचपन में अगर कहीं रेडी होके जाना था तो हमारा काम कितना सिंपल था। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और बहुत ही आसान हो जाता था क्योंकि मम्मी हम सबको रेडी करने में बिजी हो जाती थी। चाहे फेस्टिवल हो, किसी की शादी हो, संडे को रिलेटिव्स के घर जाना हो, मम्मी का एक ही मिशन होता था, पूरी फैमिली टाइम पर तैयार होनी चाहिए। क्योंकि पापा पूछ रहे होते थे कि मेरा कुर्ता कहाँ है, बच्चों को मैचिंग कपड़े पहनाया जा रहा होता था और एंड में मम्मी खुद सबसे लास्ट में तैयार होती थी। तब वो ना बस घर का रूटीन लगता था। लेकिन आज सोचो तो वही छोटा सा केओस कितनी प्यारी सी फैमिली मेमोरी बन गई। और सबसे मज़े की बात तो ये है कि अब हम बड़े हो गए लेकिन फैमिली को रेडी करने का सीन ऑलमोस्ट वही है, बस अब कपड़े चूज करने की बारी हमारी। तो इस आज़ादी सीजन इसी फैमिली वाली फीलिंग को यूएसए में और करीब ला रहा है ईडन रोप। ऑगस्ट 6 से 16 तक एंजॉय करें फ्लैट 35% ऑफ ऑन अपैरल फॉर मेन, विमेन एंड किड्स और फ्लैट 10% ऑफ ऑन फ्रेग्रेंसेस। विजिट देयर फ्लैगशिप स्टोर इन नॉर्थ ब्रंसविक, न्यू जर्सी या नेशन वाइड शॉप कीजिए एट us.edenrope.com। ईडन रोप, अ लेगेसी ऑफ स्टाइल। और दोस्तों, बचपन में घर से निकलते वक्त आपके घर में सबसे लेट तैयार होने वाला इंसान कौन था? डीएम मी ऑन @RJ मिर्ची सिद्धि, SIDDHI। और उसी लेट लतीफ के लिए ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

डेट नाइट का एक्साइटमेंट ना दोस्तों रेस्टोरेंट पहुंचने के बाद नहीं, थोड़ा पहले ही शुरू हो जाता है। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और प्लान चाहे हफ्तों पहले बने हो या शाम को अचानक डिसाइड हुआ हो, रेडी होते वक्त मूड ना ऑटोमेटिकली थोड़ा चेंज हो ही जाता है। फेवरेट आउटफिट, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट, फेवरेट फ्रेग्रेंस और सबसे इंपॉर्टेंट वो फीलिंग कि आज रूटीन से कुछ अलग होने वाला है। और ऑनेस्टली चाहे सालों पहले की रिलेशनशिप हो या नई नई डेटिंग, कभी कभी ऐसे ही कुछ मोमेंट्स होते हैं जो एक सिंपल से डिनर को भी ना थोड़ा स्पेशल बना देते हैं। तो अगर आजकल आपके कैलेंडर में भी ऐसी कोई इवनिंग आ रही है तो उसे थोड़ा और ड्रेसअप करने का एक बहाना तनिष्क भी दे रहा है। तनिष्क प्रेजेंट्स फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स विद अप टू 25% ऑफ ऑन डायमंड वैल्यू एंड मेकिंग चार्जेस, 0% डिडक्शन on exchange of old gold above 18 carat. Terms and conditions apply. So, aaj hi visit kijiye Tanishq store at 1429 Oak Tree Road, Iselin, New Jersey and add the diamond glam to your love story. Usi ke saath mujhe zarur bataiye ki aapka ultimate date night Bollywood song kaun sa hai. DM me on Insta @RJ Mirchi Siddhi, SIDDHI. Aur chaliye meri romantic playlist ka ye agla gana right here on Mirchi. It's hot.

गरबा का मूड हो या ऑफिस का बोर्डम, दीप गुजराती स्नैक्स की बीट ही काफी है। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी और सूरती स्पेशल तीखा मिक्स भटानी कानी। एवरी बाइट में लगता है दैट यू आर डूइंग डांडिया एंड दैट टू विद फ्लेवर्स, स्पाइसी क्रंची और देसी फन, या जिसकी गूंज ना मिर्ची सिद्धी के स्टूडियो तक भी पहुंच जाती है। तो आज ही ट्राई कीजिए दीप गुजराती स्नैक्स, सूरत से आया फ्लेवर का फेस्टिवल, क्योंकि दीप खाओ तो जानो। तब तक के लिए सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Iskabana, puskabana, sakabana. Yabana. Murga, murga. La vieja la murga.
2: Mirchi, murga.
3: Hello.
4: Could I speak to Manish, please?
3: Speaking.
4: मैं प्रोफेसर त्रिपाठी बोल रहा हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से. ओके मनीष, आई नीड योर फेवर. आपकी मदद की जरूरत पड़ गई थी. मैं यहाँ पे लेक्चर्स देता हूँ स्टूडेंट्स को. मैं यहाँ पे जो सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ मेरे स्टूडेंट्स को, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन. राइट, कि पहले इंसान एप था. आई बिलीव आपने भी पढ़ा होगा किसी जमाने में. यहाँ पहले इंसान बंदर की शक्ल में था, फिर वो धीरे धीरे धीरे धीरे यू नो एक इंसान बन गया. राइट,
3: बताएंगे आप कौन बोल रहे हैं?
4: मैं एक बार फिर बताता हूँ, मैं प्रोफेसर त्रिपाठी बोल रहा हूँ. मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन. राइट, एक मेरा सब्जेक्ट है जो मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ. 40-50 स्टूडेंट्स हैं मेरे. इफ यू डोंट माइंड, मैं प्लीज आपसे अगर चाहूँ आप मुझे 2 घंटे दे सकते हैं मेरी क्लास में आके.
3: 2 घंटे करना क्या है, मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा हूँ.
4: वही वही, तो ये मेरा एक सब्जेक्ट है जो मैं स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ कि इंसान बंदर होता था. तो मेरे स्टूडेंट्स इस बात पे यकीन कर नहीं रहे. तो आप अगर क्लास में आ जाएंगे ना स्टूडेंट्स के सामने, तो स्टूडेंट्स को सामने मैं आपको खड़ा कर दूंगा और आपका चेहरा ब्लैकबोर्ड के पास आ जाएगा, तो उनको यकीन आ जाएगा कि हाँ पहले इंसान वाकई में बंदर. आई एम श्योर कि सारे यकीन कर जाएंगे कि हाँ पहले इंसान बंदर हुआ करता था. बस इतनी हेल्प चाहिए थी मुझे आपकी. तो कब आ जाएंगे आप मुझे ये बता दीजिए. कल का रख ले. मेरी बात सुनो. आई एम प्रोफेसर. मेरी बात सुनिए यार. हेलो, वैसे दिल्ली कितनी गालियां खाऊं मैं आपको हंसाने के लिए यार, ये नाइंसाफी है.
3: हेलो,
4: मैं प्रोफेसर त्रिपाठी. मेरी बात सुनिए. मुझे माफ कर दो, थोड़ा ज्यादा हो गया था. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मुझे नंबर दिया था तुम्हारी दोस्त कपिल ने, उसने कहा था कि तुम्हारा मुर्गा बना दे यार. मैं मुर्गा बनाया है, तुम रेडियो मिर्ची पे हो. आपकी इजाजत हो तो मैं हंस लूं यार. मनीष, वो एक्चुअली स्टूडेंट्स को यकीन नहीं आ रहा था कि आदमी पहले बंदर होता था, इसलिए मैंने जो लगा कि तुम आ जाओगे तो एक बार काम बन जाएगा यार. इंसान पहले बंदर होता था, अब मेरे को यकीन आ गया, मैं बता दूंगा उनको.
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स

दाल चावल या आलू पराठा, एसयूवी, मिड साइज एसयूवी या फिर सेडान। यार जितने ऑप्शंस होते हैं ना उतना ही कंफ्यूजन बढ़ता है। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और अगर आप भी मेरे जैसे हो ना कि यार जितने ज्यादा ऑप्शंस दोगे उतना ही कंफ्यूजन बढ़ता है, तो ऐसे में ना मैं जो अपने डिसीजंस होते हैं वो आउटसोर्स कर देती हूँ। मतलब मैं कुछ डिसाइड ही नहीं करती, किसी और को बोल देती हूँ भाई तू मेरे लिए डिसाइड कर ले। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो चीज़ है ना घर के मामले में बिल्कुल भी फेल होती है। अगर खुद का घर खरीदने का सपना है तो जितने ज्यादा ऑप्शंस हो उतना बेटर होता है, क्योंकि तभी तो पता चलता है ना कि ये जो बैक यार्ड है जो हमें चाहिए वो सच्ची में चाहिए कि नहीं, बैकयार्ड के साथ फ्रंट यार्ड भी चाहिए कि नहीं, या साइड यार्ड भी चाहिए कि नहीं, फ्लोरिंग किस टाइप की होनी चाहिए, घर का जो किचन है वो किस टाइप का होना चाहिए। जितने ज़्यादा ऑप्शंस देखने मिलेंगे उतनी ही क्लैरिटी और भी ज़्यादा आती है, और वो तभी पॉसिबल होता है जब मार्केट में बहुत ज़्यादा घर अवेलेबल हो फॉर सेलिंग। तो अगर आप भी फर्स्ट होम बायर हो तो चलिए मेरे दोस्त बीच से पूछते हैं फ्रॉम लाइन मॉर्गेज कि मार्केट में फिलहाल घर का कितने सारे ऑप्शंस है, क्योंकि यार एक ही तो जिंदगी है और इतने सारे ख्वाहिशें हैं, एक एक पूरी करना भी तो जरूरी है। तो चलिए पूछते हैं बीश से। ओवर टू यू बीश।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।
1: हिट

गानों की ना एक अलग ही दुविधा है। शाम शांता लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और कभी कभी ना गाना याद रह जाता है लेकिन फिल्म ही याद नहीं रहती, और मेरे साथ तो ये अक्सर होता है। कभी किसी रेस्टोरेंट में या रेडियो पर एक गाना बजता है और दिमाग तुरंत बोलता है कि अरे वाह क्या गाना है, पर अगला सवाल शुरू हो जाता है कि ये किस मूवी का गाना था, और बस फिर पूरा बॉलीवुड क्विज शुरू हो जाता है। कोई एक्टर याद आ जाता है, कभी कोई सीन याद आ जाता है, कोई कॉस्ट्यूम तक याद आ जाता है, लेकिन मूवी का नाम लास्ट में याद आता है। और शायद इसीलिए बॉलीवुड सॉन्ग्स इतने पावरफुल होते हैं कि फिल्म भले ही भूल जाओ लेकिन गाने नहीं भूलते। वैसे आप ही बताइए कि ऐसा कौन सा बॉलीवुड गाना है जिसका ट्यून आपको अच्छे से याद है लेकिन मूवी का नाम याद करने में सदियां लग जाती है। डीएम मी ऑन इंस्टा RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और चलिए देखते हैं अगला गाना आप कौन सी मूवी का है ये पहचान पाते हो या नहीं। ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

ओटीटी प्लेटफॉर्म का सबसे बड़ा झूठ पता है क्या होता है? शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि, और वो कहना कि बस एक एपिसोड और, ये सेंटेंस बोलते ही ना इंसान ऑफिशियली 2 घंटे के लिए अनअवेलेबल हो ही जाता है, क्योंकि एक एपिसोड ख़त्म होता है, स्क्रीन पूछती भी नहीं और अगला शुरू हो जाता है, और हम सोचते रहते हैं कि ठीक है यार इस बार लास्ट एपिसोड, और फिर देखते ही देखते रात के 1:30 कब बज जाते हैं समझ ही नहीं आता। और शायद इसीलिए ओटीटी प्लेटफॉर्म को हमसे ज़्यादा हमारी सेल्फ कंट्रोल पे भरोसा होता है, उनको बहुत अच्छे से पता होता है कि ये लोग स्किप नहीं करने वाले, अगला एपिसोड बजेगा ही। वैसे आपके घर में बिंज वॉच चैम्पियन कौन है? टेल मी ऑन इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। क्या वो आप हो, आपके स्पाउस हो, या वो दोस्त जो पूरी सीरीज एक वीकेंड में खत्म कर लेता है? फिलहाल ओटीटी एपिसोड नहीं, लेकिन ये अगला बॉलीवुड गाना जो आप स्किप नहीं कर सकते, सुनते हैं राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

बॉलीवुड का ड्रामा और पर्दे के पीछे का हंगामा। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और आज का हंगामा आ रहा है दिल धड़कना दो मूवी के गल्ला गुड़िया गानों से। वैसे यार ये गाना स्क्रीन पर तो फुल ऑन फैमिली मस्ती लगता है, मतलब सब नाच रहे हैं, कैमरा घूम रहा है, एनर्जी नॉन स्टॉप है। पर पर्दे के पीछे असली कमाल ये था कि डायरेक्टर ज़ोया अख्तर ने इस गाने को एक टेक में शूट किया है। जी हाँ, इसके लिए हर जो एक मूवमेंट था वो प्लान था, हर कैमरा टर्न प्लान था, हर एक्टर की एंट्री एग्जिट और कोरियोग्राफी डिटेल में रिहर्स की गई थी। तो कैमरा जब चालू हुआ यानी रोलिंग जब चालू हुई, उसके बाद पूरा गाना खत्म होने के बाद ही वो रोलिंग बंद की गई थी। और ज़ोया अख्तर ने खुद कहा था कि इतनी प्लानिंग और मैनेजमेंट हुई थी तब जाके ये पॉसिबल हुआ है। तो सोचिए दोस्तों, हम तो कभी कभी ऑफिस में अपने बॉस को अगर छुट्टी मांगनी है तो एक स्ट्रेट वॉइस नोट भी एक टेक में रिकॉर्ड करके नहीं भेज पाते, लेकिन यहाँ तो पूरा का पूरा गाना, पूरा का पूरा कास्ट, मूविंग कैमरा, डांस, टाइमिंग, एक्सप्रेशन, सब कुछ एकदम सिंक में चल रहा था। मतलब यार स्क्रीन पर जो फुल चिल फैमिली वाइब लग रही थी ना, उसके पीछे स्टॉप वॉच लेवल डिसिप्लिन और टीम वर्क था। तो ये बात तो बहुत जाहिर सी है कि बॉलीवुड में ना कभी कभी सबसे नेचुरल दिखने वाली चीज उसके पीछे सबसे ज्यादा प्लानिंग होती है। तो दोस्तों आप भी मुझे बताना कैसा लगा आपको ये पर्दे के पीछे का किस्सा, और ऐसे ही गानों के पर्दे के पीछे के किस्से जानने के लिए मुझे जरूर बताना विच इज योर फेवरेट सॉन्ग। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और फिलहाल ये वन टेक का कोरियोग्राफ किया हुआ गाना सुनते हैं, गल्ला गुड़िया फ्रॉम दिल धड़कने दो, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Rocket Mirchi.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabbala. Burga, burga. La vizba la burga.
0: Mirchi, burga.
2: हेलो
3: आकाश
2: जी।
3: आकाश मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ। आपने मुर्गा बनाने के लिए रिक्वेस्ट किया था ना?
2: हाँ हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
3: मुझे बताइए किसका मुर्गा बनाना है?
2: मेरी गर्लफ्रेंड है।
3: ओहो, यही मिली आपको?
2: जी जी जी, बहुत पंगे लेती है।
3: अच्छा आकाश, ये थोड़ी सी फॉर्मेलिटी है क्योंकि मुर्गा बनाने से पहले हम जो रिक्वेस्ट करते हैं मुर्गे की, उनसे एक फॉर्म फिल करा लेते हैं।
2: ठीक है।
3: मुझे अपना पूरा नाम बता दीजिए।
2: आकाश मल्होत्रा।
3: अच्छा आकाश, मैं थोड़ा सा इसको फॉर्म को पढ़ देता हूँ क्योंकि मुर्गा थोड़ा सा मुश्किल भी होता है बनाना, कभी गुस्सा आ जाता है लोगों को, यू नो। तो इसमें कुछ क्लॉज और रूल्स हैं, वो आप फॉलो करेंगे, इसको अग्री करेंगे तो ही हम मुर्गा बनाएंगे।
2: राइट, बिल्कुल।
3: चलिए, अच्छा इसमें ये है, मैं इसमें आपका नाम लिख देता हूँ, मैं आपको पढ़ देता हूँ। मैं आकाश मल्होत्रा अपने होशो आवाज में अपनी गर्लफ्रेंड
2: पूजा
3: पूजा का रेडियो मिर्ची पे मुर्गा बनवा रहा हूँ। अगर कल को पूजा को इस बात पे गुस्सा आ जाता है तो उसका जिम्मेदार आकाश यानी मैं खुद हूँगा। ठीक है
2: जी, डेफिनेटली।
3: ओके, अगर गुस्सा इतना ज्यादा आ जाता है कि पूजा केस कर देती है मुर्गा बनाने वालों पे, तो उसका जिम्मेदार भी आकाश मल्होत्रा होगा।
2: अच्छा,
3: अगर केस पूजा जीत जाती है और सजा के तौर पे 10 साल की बिना बेल की सजा होती है, तो उसका जिम्मेदार आकाश मल्होत्रा होगा।
2: क्या कह रहे हैं?
3: अगर सजा के तौर पे सजाए काला पानी भेजा जाए तो आकाश मल्होत्रा जाएगा। ये दूसरा
2: क्या सर, मतलब नहीं, मुर्गा बनाने में ऐसा सब भी होता है?
3: नहीं नहीं, ये फॉर्मेलिटी है ना सर, ये पूरा करना होता है, ये कंपनी की तरफ से है। ये लास्ट सुन लीजिए, लास्ट में लिखा हुआ है, अगर मुर्गा बनवाने वाले ने शुरू की 2 शर्तें मान ली हैं तो उसको मुर्गा बनवाना ही पड़ेगा जिसका वो चाहता है। तो मैं पूजा को फोन करता हूँ, अब आप मजे लीजिएगा, है ना?
2: सर मेरी बात
3: तो सुनिए। हाँ बताइए।
2: फन की बात अलग है, लेकिन वो उसको सीरियसली गुस्सा आ गया। और
3: अरे मेरी बात तो सुनिए, गुस्सा आपको आज
2: तो प्लीज रहने दीजिए, इस को मेरी बात मान लीजिए, प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी।
3: चलिए मैं एक शर्त पे रहने दूंगा
2: जी,
3: अगर आप बोलेंगे मेरे साथ कुकड़ू। आकाश तुम रेडियो मिर्ची पे हो, मैं तुम्हें ऑन एयर डाल दिया है और तुम्हारा ही मुर्गा बन गया।
2: मेरा बन गया वो कुकड़ू।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

बॉलीवुड की कुछ हीरोइंस का लुक ना फिल्म से निकलकर सीधा फैशन मेमोरी बन जाता है। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और कभी माधुरी का आइकॉनिक इंडियन लुक, तो कभी दीपिका का ग्रैंड ट्रेडिशनल स्टाइलिंग, तो कभी करीना का एफर्टलेस ग्लैम। यार फिल्म खत्म हो जाती है लेकिन वो लुक याद रह ही जाता है, क्योंकि मेमोरेबल स्टाइल यूजुअली लाउड नहीं होता। आउटफिट, कॉन्फिडेंस और वो केयरफुली चोजन फिनिशिंग टचेस मिलकर ही उसे सिग्नेचर बना देते हैं। और रियल लाइफ में भी किसी की वेडिंग हो, पार्टी हो या स्पेशल इवनिंग, उस पर हम सबका अपना अपना एक हीरोइन मोमेंट तो बनता है। और उसी के लिए तनिष्क प्रेजेंट्स फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स। एंजॉय अप टू 25% ऑफ ऑन डायमंड वैल्यू एंड मेकिंग चार्जेस, प्लस 0% डिडक्शन ऑन एक्सचेंज ऑफ ओल्ड गोल्ड अबाउट 18 कैरेट। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। तो मूवी स्क्रीन हो या रियल लाइफ, तनिष्क के फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स के साथ अपना सिग्नेचर मोमेंट्स आप भी क्रिएट कर सकते हो। और दोस्तों मुझे जरूर बताना कि बॉलीवुड की कौन सी ऐसी हीरोइन है जिसका लुक आपको आज भी आइकॉनिक लगता है। टेल मी ऑन इंस्टा एट RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI, क्योंकि मेरी फेवरेट हीरोइन का आइकॉनिक गाना आपके लिए राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
0: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और हैरत से नहीं, एनर्जी से भर गया था ये ट्रैक, क्योंकि यार ये गाना फ्रॉम द एल्बम अनजाना अनजानी सुन के यार मूड ना एकदम ऑटो फ्रेश हो जाता था। लकी अली की वॉइस विशाल शेखर के बीट मैजिक क्रिएट कर देता था। और जी हाँ, हैरत वो गाना था जो रणबीर के जो बाइक राइड या कार राइड के सीन्स थे उन सबको भुलाकर अपने इनर ट्रैवलर को जगाने के लिए बनाया गया था। मतलब अगर वेगस में ड्राइव कर रहे हो तो मन में हैरत गाना तो बचता ही था। तो चलिए आज इस गाने का टेम्पो फील करते हैं। गाड़ी फुल स्पीड में मत चलाना क्योंकि हम अभी भी न्यू जर्सी में हैं, लेकिन गाने का तो फील कर सकते हैं बॉस। तो चलिए सुनते हैं हैरत फ्रॉम द एल्बम अनजाना अनजानी राइट हियर ऑन मिर्ची। वैसे आप भी बता सकते हो विच इज़ योर फेवरेट एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट है। टेल मी ऑन इंस्टा एट RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक के लिए हैरत राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: तेरा क्या होगा कालिया?
1: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
0: अब
2: मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और जी हाँ, बातें हो रही है एक ऐसे एल्बम की जिसका हर एक गाना यार हिट पे हिट था। और इस एल्बम का जो टाइटल ट्रैक था उसने यार सिर्फ मूवी में ही नहीं बल्कि पूरे जनरेशन का मूड बना दिया था। जी हाँ, बात हो रही है अनजाना अनजानी की। और अनजाना अनजानी की जो कहानी है, जो विशाल ददलानी और शिल्पा राव के डुएट में गाया गया था, जिसके लिरिक्स में ही ना वो एक वंडरलस्ट फील था कि कौन जाने कौन हूँ मैं, मतलब इंस्टेंट कनेक्ट था। और सबके लाइफ में जो ये अपनी जो भी अपनी राह ढूंढ रहे होते हैं ना, उनके लिए एकदम हिटिंग सॉन्ग था ये। वैसे गाना सुन के तो लगता था जैसे जिंदगी ना एक ट्रिप है, मतलब डेस्टिनेशन नहीं। तो अगर आपको भी ऐसा ही गाना जर्नी वाला पसंद है तो मुझे जरूर बताना विच इज योर फेवरेट सॉन्ग फ्रॉम योर फेवरेट एल्बम। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHR। और फिलहाल बजाते हैं ये अनजान अनजानी का सुपर डुपर हिट गाना राइट हियर ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइव सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और जी हाँ, 2010 में आई थी ये एल्बम अनजाना अनजानी, कंपोज बाय विशाल शेखर। और इसका एक ऐसा गाना आया था जिसमें यार मतलब दिल तोड़ दिया या फिर यादें छोड़ गई हो ना, बस वो गाना सुन लो हर फीलिंग डबल हो जाती थी। मोहित चौहान की आवाज़ में और शेखर रवजियानी ने भी जो इमोशन दिया था इस ट्रैक में, ओहो किसी थेरेपी से ना कम नहीं था। क्योंकि इस गाने में सूफी टच भी था, मॉडर्न मेलोडी भी थी, जैसे कि दर्द और सुकून बिल्कुल एक साथ मिल गए हो। तो दोस्तों इतना प्यारा गाना इस एल्बम का। वैसे तो यार इस एल्बम के हर एक गाने अमेजिंग थे, तो आपको कौन सा गाना इस एल्बम का सबसे ज़्यादा पसंद है, टेल मी ऑन इंस्टा आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और फिलहाल ये जो ब्रेकअप रिकवरी वाला गाना है ना, सुन लेते हैं यार विशाल शेखर की कंपोजिशन राइट हियर ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Mirci. Iskabana, uskabana, sakabana. Yabana. Burga, burga. La vidva la burga. Mirci, burga.
1: Hello.
2: Hello, ये स्वर्गीय अनिल चौहान के यहाँ से बोल रहे हैं भाई साहब?
1: किसके यहाँ से?
2: स्वर्गीय अनिल चौहान.
1: मतलब किसके यहाँ बात फोन मिलाया आपने?
2: स्वर्गीय अनिल के यहाँ फोन मिलाया भाई साहब. मैं बोल रहा हूँ
1: अनिल ही बोल रहा हूँ. स्वर्गीय नहीं हूँ मैं, जिंदा हूँ.
2: सर स्वर्गीय अनिल चौहान उनका पूरा नाम है. सर मैं से बोल रहा हूँ, पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट से. तो ये स्वर्गीय अनिल चौहान के यहाँ से कोई हो तो उनसे बात करा दीजिए.
1: दिमाग खराब है तेरा? अब मैं खुद बोल रहा हूँ तो सोच कम से कम.
2: सर आप ये बेवकूफी की बात ना करें. आप एक तो जुबान सवाल की बात करें. मैं पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ. आप कह रहे हैं आप जिंदा हैं, यहाँ पोस्टमार्टम कर रखा है हमने. आपकी रिपोर्ट आ गई है सर, आके ले जाइए पोस्टमार्टम की रिपोर्ट.
1: स्वर्गीय नहीं, तू अनिल चौहान से ही बात कर रहा है.
2: स्वर्गीय अनिल चौहान यार, आप जो लक्ष्मी नगर में रहते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ.
1: हो गया आपका कि स्वर्गीय अनिल चौहान, मैं जिंदा हूँ भाई. बैठा है घर परिवार वाले में, तेरे कोई पागल तो नहीं हो गया?
2: कौन पागल हो गया? आपकी पोस्टमार्टम, मेरी बात सुन लीजिए आप. मैंने मारा पोस्टमार्टम हमने किया. स्वर्गीय अनिल चौहान से बात करनी है, उनसे बात कराई. बीच में आप कैसे आ गए यार, कमाल कर दिया आपने. दिमाग खराब मेरा नहीं हुआ, आपको यकीन नहीं है तो दोबारा आके पोस्टमार्टम करा लो. एक ही रिपोर्ट है दोनों की.
1: डॉक्टर बोल रहा हूँ.
2: मैं डॉक्टर विजय बोल रहा हूँ यार. मैंने खुद पोस्टमार्टम किया उनका.
1: ऐसा
2: केस हम क्या करेंगे? केस तो मैं उन पे करूंगा, स्वर्गीय अनिल चौहान पे, क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पे लिखा हुआ आप बाप बनने वाले थे. वो बाप बनने वाले.
1: परिवार वाले आदमी से बात करता है कौन है?
2: बेवकूफी की बात मत करिए आप. आइए यहाँ पे पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट में, दिखाता हूँ आपकी लाश, आपकी बॉडी दिखाता हूँ यहाँ पे आके. पोस्टमार्टम तो करके छोड़ूंगा मैं
1: जी.
2: स्वर्गीय अनिल चौहान जी के यहाँ से कोई बात कर सकते हैं मेरे से?
1: मेरी बात सुनिए सर,
2: आप फोन मत काटिएगा, बड़ा मुश्किल से मिलता है. अनिल चौहान जी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और आप रेडियो मिर्ची पे हैं. आपका मुर्गा बनाया, छोटा सा मजाक किया है. आपकी उम्र बहुत लंबी है यार, आप टेंशन ना लें.
1: अरे किसी बहुत मार खाओगे आप, सही बता रहे हैं. क्या
2: सर, मैं पिटने को तैयार हूँ, लेकिन आपकी हंसी सुन के मुझे मजा आता है. अब मेरे साथ आप प्यार से कह दीजिए.
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट. मिर्ची फ्रेश माल.
4: लव लॉस और होप का म्यूजिकल सफर वे जुनून.

0: गाने को गाया है सुबोध शर्मा ने, म्यूजिक दिया है मिथुन ने और लिरिक्स लिखे हैं सईद कादरी ने। फिल्म आवारा पंटू से सुनते रहिए बेजुनून, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम चांदा लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि और आज एक ऐसे एल्बम के बारे में बात हो रही है जिसका यार हर एक गाना सुपर डुपर हिट है। जी हाँ, अनजाना अनजानी 2010 में रिलीज हुआ वो एल्बम। और आज की जो रिक्वेस्ट आई, सॉन्ग रिक्वेस्ट, दैट इज फॉर द सॉन्ग तुमसे ही तुमसे। और ये जो रिक्वेस्ट आई है, दैट इज फ्रॉम रिया, जो कि रहती है एडिसन में। और रिया जी कहती है कि यार ये गाना जो तुमसे ही तुमसे गाना है, प्लीज सिद्धि जी बजा देना, क्योंकि ये मूड रोमांटिक है और वेदर भी रोमांटिक है, तो ऐसे माहौल में ये गाना तो बजना चाहिए। तो जी हाँ रिया जी, एब्सोल्युटली करेक्ट। दोस्तों वैसे क्या आपको 2010 का वक्त याद है, जब अनजाना अनजानी एल्बम ने सबको होपलेस रोमांटिक ही बना दिया था? मतलब विशाल शेखर का मैजिक चला था और इतनी खूबसूरत सी आवाज़ है हर गाने में, विशाल की कहिए, शिल्पा राव की कहिए, रणबीर प्रियंका की केमिस्ट्री, ओ हो हो, मतलब तुमसे ही तुमसे एक बहुत ही सुंदर सा गाना है, जहाँ हर नोट लगता है जैसे दिल से निकला हो। जैसे लॉन्ग ड्राइव पे सनसेट के टाइम ये गाना बज जाए ना, तो बस दुनिया रुक जाए। और मुझे तो लगता है कि हर किसी के लाइफ में एक तुमसे ही तुमसे मोमेंट ज़रूर होता है, जहाँ सब कुछ एकदम ब्लर सा हो जाता है और बस वो एक इंसान दिखता है जो दिल में है। तो बताइए आपका तुमसे ही तुमसे मोमेंट कब आया था? टेल मी ऑन इंस्टाग्राम जे मिर्ची सिद्धि SIDDHI, या फिर इसी एल्बम का आपका फेवरेट गाना भी आप बता सकते हो। फिलहाल हम बजा रहे हैं तुमसे ही तुमसे, रिया जी के रिक्वेस्ट पर, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

अमेजिंग सा है, मौसम खूबसूरत सा है, तो थोड़ा अपबीट गाना चाहिए। जी हाँ, तो इसी के लिए आई फील गुड जरूर बजाइए। तो बस नाम ही काफी है यार, मतलब आई फील गुड एक ऐसा गाना जो बजते ही लगता है कि दुनिया में ना स्ट्रेस नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। और रणबीर और प्रियंका की केयर फ्री केमिस्ट्री इन दिस मूवी अनजाना अनजानी, न्यूयॉर्क इन योर लाइट और विशाल ददलानी की वो रॉक स्टार एनर्जी, इस सॉन्ग को हर बीट में ऐसा लगता है कि बस लाइफ के सारे प्रॉब्लम्स को भूल जाओ और चिल कर लो यार। तो चलिए आज बजाते हैं आई फील गुड फ्रॉम द वंडरफुल एल्बम ऑफ अनजाना अनजानी, जिसका हर एक गाना ज़बरदस्त है। वैसे आप भी मुझे बता सकते हो वो ऐसा कौन सा एल्बम है जिसका यार हर एक गाना सुपर डुपर हिट है। टेल मी ऑन इंस्टा एट RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक के लिए राज की रिक्वेस्ट पर बजाते हैं आई फील गुड राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। चम चांदा लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और बात हो रही है 2010 के एल्बम की, अनजाना अनजानी के एल्बम की, जिसको कंपोज किया है विशाल और शेखर ने। और फिलहाल जो रिक्वेस्ट आई है दैट इज फ्रॉम राज, जो कि रहते हैं पिस्कैटवे में। और यार वो कहते हैं कि यार माहौल

0: यूं ही चलेगी।
1: शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी और इसी प्यारी सी एनर्जी के साथ आई एम साइनिंग ऑफ फॉर टुनाइट। और वैसे तो हमने आज थोड़ी लोकल, थोड़ी फिल्मी, थोड़ी ओटीटी और बहुत सारी नॉस्टैल्जिया शेयर की है और होप आज की जो आपकी शाम है थोड़ी सी लाइटर और ज्यादा फिल्मी बन गई हो। और इसी के साथ कल मिलते हैं फिर एक बार विद नई गपशप और नए सॉन्ग रिक्वेस्ट। तो अपनी सॉन्ग रिक्वेस्ट की लिस्ट रेडी रखना, सेंड मी ऑन इंस्टा @RJMirchiSiddhi और आप कहीं ना जाइए क्योंकि मिर्ची रोशी आने वाली है लव के नए फंडे लेकर। तो तब तक के लिए सुनते रहिए मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: गुड मॉर्निंग इन द नाइट लेडीज एंड जेंटलमैन. जी हाँ बहनों और भाइयों, ये होगा आज से मेरा नया तकिया कलाम, क्योंकि मैं आपको रात को भी गुड मॉर्निंग विश कर सकती हूँ. मेरा मुंह है, इट्स अ डेमोक्रेसी, इट्स अ फ्री कंट्री, मैं जो चाहूँ कर सकती हूँ. और आज क्योंकि मैं जो चाहूँ कर सकती हूँ वाले मूड में हूँ, मैं सारा टाइम एज लॉन्ग एज आई एम श्योर टॉकिंग टू यू थ्रू योर रेडियो सेट्स और व्हाटएवर यू आर लिसनिंग टू मी फ्रॉम, हम बात करेंगे एक बहुत ही घोर बीमारी की रिलेशनशिप्स में. इस बीमारी का नाम बहनों और भाइयों है अंधापन. आंखों का नहीं, जिसको चश्मा पहनकर आप ठीक कर सकते हैं, दिल के प्यार में होने का अंधापन. आपने कभी ऐसे अंधेपन वाली चीजें की अपने रिलेशनशिप में? जैसे कि आई विल टेल यू, मेरे एक रिलेशनशिप में, जिसकी मैं बहुत सारी बातें करूंगी थ्रू द कोर्स ऑफ द शो, माई बॉयफ्रेंड डिसाइडेड वेरी अर्ली ऑन कि यार तू मुझसे ज़्यादा पैसे कमाती है तो हम जब भी बाहर जाएंगे तू पैसे देगी. यार मेरा बेड टूट रहा है, वाई डोंट यू बाई मी अ न्यू बेड. यार ये फ्रिज ठीक से काम नहीं कर रहा, गर्मियों के दिन है, एक नया फ्रिज ले दे. यार माइक्रोवेव नहीं है, पता है खाना ठंडा खाना पड़ता है, ज़रा माइक्रोवेव ले दे. और प्यार के अंधेपन में मैंने उस बंदे पे इतने पैसे खर्चे हैं कि अगर मैं इंटरेस्ट लगा के उसे बिल भेजूँ ना तो आज मैं ये नौकरी छोड़ सकूँ.